मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं समूह स्वर में गाई रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी मातृवंदना से।

अनुराधा पौडवाल की गाई शिव आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIRF पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर होगा आज का चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर DL अनुरागी से वार्ता, महोबा के वीर उदल के ब्याह की लड़ाई। 7:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 पर सुनिए धारावाहिक कीत गीता का भाग 13, शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 8:47 पर होगा फिल्म संगीत। 9:00 लोकरंग में सुनिए लीलाधर राजपूत से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाश

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर होगा मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:00 स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। आज शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम में सुनिए सवाल हमारे जवाब आपके। इसके अलावा पवन पटेल से वार्ता, युवाओं में मोबाइल की लत, समस्या और समाधान। 5:40 पर होगा फिल्म संगीत। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आ सुनिए बैजनाथ राजपूत से बुंदेली लोकगीत। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुने श्रोताओं के पत्रों, फोन कॉल्स और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमधूला। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मछली पालन विषय पर श्रीराम रैकवार से बिरजू भैया की बातचीत। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जहां खाई दो उतई रहे सो। रात्रि 8:00 भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान सशक्तिकरण। 8:35 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और रात्रि 10:00 सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। तो श्रोता, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी।
1: पंचो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं कि अपने बे पशुपालक भैया जिनके छोटे छोटे बछड़ा और बछिया हैं, तो उनके जो सामान्य रोग और उनके उपचार हैं इसके बारे में अपन ने भी ये देखो हुए कि खासतौर से अपने छोटे छोटे जो बछड़ा बछिया हैं उनका पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, जो लंबे या गोल दो ही प्रकार के हो सकते, जो कैसे हो जाते कबू कबू गंदो पानी पे बाबे से या खराब चारो जैसे अपन ने उन्हें डाल दो। बछवा बछीन की आदत हो के जब अपने छोड़ दो तो कोनो भी चारो वारो या कोनो गंदो स्थान जहाँ पड़ो भाव उते जाके कछु भी चाटन लगत है, इसे उन्हें जो है पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, वे अपने बछड़ा बछीन के गोबर में निकलने लगते हैं और उसे उन्हें अपन देख के गोबर में पहचान भी सकत हो। लक्षण जो होते हैं भैया के जो बछुआ बछिया अपने होते हैं वे सुस्त सुस्त से बने रहते और उनके पेट में तनाव सोई रात है भैया गोबर करते हैं, तो ऊ बेरा उन्हें काफी जोर सोई लगाने पड़ते है। तो अगर कोई ऐसे लक्षण अपन हम दिखें तो अपन ई की रोकथाम के लाने एक काम करें के फिनोबिस 9 ग्राम एक दवाई आउट है भैया। कितनी भैया? फिनोबिस 9 ग्राम। जा दवाई जो अपने 30 किलो वजन के बछुआ बछिया है 21 दिन में 3 बार लगातार जो है उनका 3 महीना तक अपन देत रहने हैं। इमे का कन्या अपन के तूतिया 5 रत्ती 2 छटाक पानी में मिला के खाली पेट पिवा देने हैं। बाद में 1 तोला तारपीन को तेल और 2 छटाक अरसी को तेल अपन मिला के और खाली पेट में अपने बछुआ बच्चिन का पिवा दो तो पेट के कीड़ा मर जे हैं भैया। एक और बीमारी होते भैया जा होते सफेद दस्त की बीमारी, जा तो अपन ने देखी होगी कि भैया छूत की बीमारी है। तो ई में का होते है कि सफेद बदबूदार दस्त अपने जो है बछुआ बछिया का लगन लगत

0: और जिसे अपना जो है जो पशु है बछुआ बछिया है वे जो है कमजोर होके धीरे धीरे करके जब बिलाद दिन तक जो रोग हो बनोरात तो वे मर भी सका। साधारणतः ये जो देखो गो है कि पैदा होवे के 2-3 दिन बाद ई बीमारी को प्रकोप ज्यादा होते है। ई रोग से अधिकतर जो अपना जो दूषित वातावरण है या कभी कहू ठंड लग जाए तो उसे भी जो हो जाते है। और अगर कहूँ अपन ने अपने पड़ेरुन खा बछेरुन खा जो है अपनी कीलन को दूध खीस को दूध कहा भैया जो जो समय पे ना पिवाओ ताजो दूध तो उसे भी भैया जो है जब बीमारी हो जाते है। इसे अपन अपने बछड़ा बछड़ी जो है उन्हें जैसे ही भी पैदा हुए उनके कछु घंटा बाद अपनी खीस को दूध जानवर से उनका जरूर पिवावे। नवजात बच्चन का अच्छी तरह से साफ सुथरे स्थान पे रोशनी वाले हवादार जो स्थान है उते पे राखवे और ई के लाने सल्फा मेजाथीन 5 ग्राम की जो गोली आउट है उखा 3 बराबर खुराकन में अपन खा बांट के अपने जानवर का दे देने हैं। जब ये सवेरे दोपहर और शाम के देने हैं तो इसे भी ये जल्दी लाभ अपन खा मिल जाते है। एक बीमारी और हम अपने बताए अपन पंचन खा निमोनिया की। अपन ने देखो हुए कि जो अपने बछुआ बछिया है उनका सांस लेबे में परेशानी जान लगत है। जब काय हो लगत भैया काय से उनके जो फेफड़ा होते ना उधर सूजन आ जाते है और उन्हें सांस लेवे में कष्ट होते। ई रोग की रोकथाम अपन खा जल्दी करने पर है। कैसे कि अगर इमे अपन ने लापरवाही करी तो अपने बछुआ बछिया जो है मर भी सकते हैं। ई के लाने कभू कहू जो रोग जो जो होते है अचानक मौसम जब बदल जाए या अचानक अपने पशु कहूं ठंडी में भीग जाए या उखा पसीना आ रहा हो वो अपन ठंडो पानी पिवा देवे तो ई कारण से भी जो रोग हो जाते। ई के लाने अपन भैया का करने है कि जब भी जो देख ले अपन के जो है हमारे पशु का निमोनिया हो गया है तो ऊके लाने एक काम करें कि उखा एक तो ठंड से बचाएं, टाट फट्टा ओढ़ा के पशु के आहार जो है जो अपने पशु हैं उनके शरीर खा गर्म रखें और रोग की आशंका हो वे पे रोगी पशु खा खुले हवादार स्थान पे और अन्य पशुओं से अलग बांधे। कैसे भैया निमोनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो जो है दूसरे पशु खा भी हो जाते है। पीवे के लाने उको गुनगुनो पानी देवे और खावे के लाने चोकर और हरी दूब देवे। ई के लाने भैया एक दवाई आउट है सल्फा मेजथीन की गोलियां खिलावे पे या जो है कछु हद तक सही हो सकत है। और अगर निमोनिया है तो अपन तत्काल अपने नजदीक के जो पशु अस्पताल में पशु डॉक्टर भैया है उन्हें दिखा के ई को तत्काल दवाई करवावे।
1: अभी खेती किसानी के प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर उषा मंगेशकर का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अच्छाइयां परमार्थ हैं तो बुराइयां स्वार्थजन्य होती हैं। स्वार्थ में अच्छाइयां इस प्रकार खो जाती हैं जिस प्रकार समुद्र में नदियां। प्रायः सभी नदियां किसी न किसी समुद्र में मिलने के लिए निरंतर भागती और बहती रहती हैं। उसी प्रकार मनुष्य के समस्त स्वार्थ बुराइयों के सागर की ओर बहते हैं। यूं तो संसार में सभी स्वार्थी हैं और स्वार्थ को साधे बिना जीवन को गति देना संभव भी नहीं है। लेकिन स्वार्थ के अनेक वर्ग एवं रूप होते हैं। एक धार्मिक पुरुष धर्म उपदेश दे रहे हैं तो वे भी निरपरमार्थी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी आत्मा और मन को सुख और संतोष प्राप्त होता है। उन्हें भी सम्मानित और पूज्य बनने का लोभ अथवा इच्छा रहती है। यही महत्वाकांक्षा ही उनका स्वार्थ है। दूसरी ओर एक चोर चोरी करता है तो इसमें भी उसका स्वार्थ होता है। चोरी की गई वस्तुओं से अथवा उसके विक्रय से उसका घर संसार चलाने का स्वार्थ होता है। परंतु दोनों के स्वार्थ में धरती आसमान का अंतर है। एक धर्मोपदेशक का स्वार्थ लोक कल्याणकारी होता है तो दूसरे चोर का औरों को अहित कर अपना हित साधन होता है। धर्मोपदेशक के स्वार्थ में परमार्थ जो छिपा है इसीलिए वो सम्मानित होता है और चोर अपमानित। जिस प्रकार नदियों का सागर में खो जाना निश्चित है, उसी प्रकार स्वार्थ में अच्छाइयों का विलीन हो जाना भी तय है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का स्वार्थ सदा ही समाज के अहित में रहता है। एक व्यक्ति परीक्षा के दिनों में

0: अपने घर के रेडियो टीवी का वॉल्यूम तेज करके न जाने कितने विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का भान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को परहित, पर पीड़ा, पर चिंतन का महत्व नहीं होता। हमारा स्वार्थ यदि दूसरे के हित में हो तो वो आदरणीय बन जाता है। यदि स्वार्थ मात्र अपने मजे और अपने ही भले के लिए हो तो वो अच्छाई नहीं है। बस यही बुराई उसकी सारी अच्छाइयों को ले डूबती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। यही सभी धर्मों का सच्चा सार भी है। मनुष्य को तो ईश्वर ने बोलने के साथ साथ सोचने समझने की शक्ति तथा विवेक का उपहार दिया है, तो हम अपने विवेक का सदुपयोग क्यों न करें और अपने ज्ञान और बल का सदुपयोग परहित में करें। क्योंकि बल बुद्धि का जिसने दुरुपयोग किया उन्हें दानव तथा जिन्होंने सदुपयोग किया उन्हें देव अथवा देवतुल्य मानव कहा गया। रावण, दुर्योधन, कंस आदि ने अपनी शक्ति और युक्ति का दुरुपयोग ही तो किया, जिनके कारण उनमें अच्छाइयां होते हुए भी बुराइयों के गर्त में समा गई। इसी प्रकार छल, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि का मूल कारण स्वार्थ ही होता है। ईर्ष्यालु मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थी अवश्य होगा। स्वार्थ के कारण ही वो अपने निकटतम से ईर्ष्या रखता है। वो सोचता है कि जितना भी भला हो मेरा हो, जितना बुरा हो दूसरे का हो। वो किसी को अच्छा खाते पहनते हंसते खेलते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि केवल वो हंसे दूसरे ना हंसे, सिर्फ वो ही अच्छा खाए दूसरे ना खाए, वो ही मात्र सुख भोगे दूसरे ना भोगे। दूसरों को हंसते खाते वो किसी को रोक तो सकता नहीं, अतः वह खुद ही भीतर कुढ़ता रहता है और पर निंदक बन जाता है। इस प्रकार वो अपने जीवन में बैठे बिठाए अनजाने में एक मानसिक रोग पाल लेता है, जिसमें वो स्वयं कुढ़ता रहता है, जलता रहता है और उस रोग को भोगता रहता है। प्रायः बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ जाते हैं, उनका निज विजय का स्वार्थ होता है। बात आगे बढ़ जाती है तो माता पिता भी उसमें शामिल हो लेते हैं। बहस और उत्तेजना बढ़ती जाती है, कभी कभी विकराल फसाद या अपराध की जड़ बन जाती है और अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध हमारे स्वयं के लिए कितना घातक और अहितकर हो जाता है, जिसे हमने स्वयं ही उत्पन्न किया है और उसमें हमारी सारी अच्छाइयां समा जाती हैं। हमें लाख अच्छाइयां होते हुए भी बुरे कहलाने लगते हैं, अपमानित होते हैं। कहते हैं कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। एक व्यक्ति अपने हाथ पर अंगार रखकर दूसरे को जलाने जाए तो सामने वाले का जलना ना जलना तो अनिश्चित है, पर उसका जल जाना तो तय है। इसी प्रकार दूसरे से जलने वाला व्यक्ति स्वयं तो जलता ही है और दुखी रहता है, इसलिए उनका सामाजिक जीवन अपूर्ण सा रहता है। हम यदि सम्मानित होना चाहें तो दूसरे का सम्मान करना सीखें, दूसरों को सहकार और प्यार लुटाएं, अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा अवश्य करें, दूसरों के दुख बांटें, सुख लुटाएं, बुराइयों का दमन करें, उनसे स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं, अच्छाइयों को प्रोत्साहित एवं प्रोन्नत करें, भले बने और फलमंद साहत का व्यवहार करें, निस्वार्थ रहें, यही जीवन का सच्चा सार है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। समाचारों की श्रृंखला अब हम आकाशवाणी के दिल्ली और भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:55 पर दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार, 7:05 पर दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार। रुक करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास

0: सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगर सूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:15 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु, 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केन्द्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वं राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थं अद्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एबीपीएमजेएवाई योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल

0: में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or Ayushman Bharat PMJ, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and the Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding today for the implementation of Ayushman Bharat PMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, JP Nadda, and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible healthcare for all citizens across the nation. The implementation of Ayushman Bharat PMJ in West Bengal is expected to extend financial protection against catastrophic health expenditure to millions of eligible beneficiaries in the state, while enabling seamless portability of healthcare benefits across the country. It will also strengthen the state's healthcare ecosystem by enhancing access to quality and affordable healthcare services. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari said around 4,800 illegal immigrants have been sent to Bangladesh from holding centres set up in the state's border districts, and 836 such people are awaiting deportation from these facilities. Mr. Adhikari asserted that illegal immigrants

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुरहन परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की। और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है।

0: श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लेबनान में यूएन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्च स्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा,
1: हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइकल कैंसर, और ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहने बेटियां संकोच करती है। यह सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है। और जब मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ के, कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नामाला ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: मैं अपने समूह की बुककीपर हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसमें अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है पैसे के लिए। स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिंग समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बने पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
4: बुधनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराद मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों व लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं।
4: बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि देश विदेश में इनकी मांग

0: बढ़ रही है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर के राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगर मालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जिले में योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसडीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर एलसी अनुरागी से वार्ता, महोबा के वीर उदल के ब्याह की लड़ाई।
3: महोबा का प्राचीन नाम महोत्सव नगरी था। चंद्र बरदाई ने भी महोबा को महोत्सव नगर कहा है। यह नगरी आल्हा उदल की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वीरभूमि महोबा से मात्र 10 किलोमीटर दूर ग्राम दिसरापुर में आल्हा उदल का जन्म हुआ था। उनके पिता दक्षराज व माता देवला थी। उदल का जन्म ज्येष्ठ सुदी 10 संवत 1222 विक्रमी माना जाता है। उदल का ब्याह नरवरगढ़ के राजा नरपति की सुंदर पुत्री फुलवा से हुआ था।

फुलवा को प्रतिदिन फूलों से तोला जाता था। उदल फुलवा की सुंदरता पर इतना मुग्ध था कि उसे पाने के लिए उदल को स्त्री बनना पड़ा था। उदल के ब्याह की लड़ाई बड़ी रोचक हुआ वीरता से भरी है, जो इस प्रकार है। उरई के राजा माहिल ने महोबा के राजा परमाल से संकट में काम आने युद्ध करने हेतु काबुल के घोड़े खरीदने के लिए कहा। तब राजा परमाल ने राज दरबार में काबुल जाने के लिए बीरा धरवाया, जिसे किसी छत्री ने नहीं उठाया। अंत में उदल ने बीरा उठाकर चुनौती स्वीकार कर ली और काबुल जाने को तैयार हो गया। परमाल ने ढेबा को भी उदल के साथ काबुल भेजा और काबुली घोड़े खरीदने के लिए राजा परमाल ने उदल को 14 खच्चर मोहरें दी। उदल व ढेबा रानी मलना व सुनवा आदि से आशीर्वाद लेकर 7 की यात्रा करके नरवरगढ़ के राजा नरपति के नगर पहुँचे और नरपति की पुत्री फुलवा की फूल बगिया में अपना घोड़ा बैंदला बांधा और विश्राम करने लगे। तब माली व उसकी पत्नी हिरिया ने उदल को फुलबगिया में रुकने से मना किया, परंतु उदल ने दोनों को एक एक मोहरें दे दी, जिससे माली ने 1 के बजाय 10 तक रुकने की अनुमति दे दी। हिरिया मालिन के पूछने पर उदल ने बताया कि वह महोबा के राजा परमाल वीर आल्हा के छोटे भाई हैं, सुनवा हमारी भाभी है। तब हिरिया ने कहा कि सुनवा मेरी सहेली है, जैसे तुम सुनवा के देवर उसी तरह मेरे भी देवर हो गए, अतः तुम मेरे घर चलो, वहीं विश्राम करो। तब उदल फुलवा से मिलने के लिए हिरिया के घर 3 तक रुका, परंतु अभी तक वह फुलवा को देख नहीं सका। हिरिया फुलवा के लिए फूलों का हार बनाया करती थी। एक दिन हिरिया कुछ सामग्री खरीदने बाजार गई, उसी समय उदल ने एक चौलरा हार बनाया। हिरिया को देर हो गई थी, इसलिए वह वही चौलरा हार फुलवा को पहनाने ले गई। फुलवा ने हिरिया से कहा कि इस हार में गांठें मजबूत लगी हैं, इसमें किसी मर्द का हाथ लगा है। तब हिरिया ने कहा कि मेरी बहनोतिन महोबा की राजकुमारी चंद्रावली की मालिन है, जिसके साथ उठती बैठती और पंसासार खेलती है। वह मेरे घर आई है, उसी ने तुम्हारे लिए यह हार गूंथा है। तब फुलवा ने कहा कि तुम अपनी बहनोतिन से मुझसे मिलवाओ। तब हिरिया अगले दिन उदल को चुरियां बिछियां नाक छिदवाकर नथनी पहनाकर स्त्री भेष में डोली में बैठाकर फुलवा के सतखंडा महल में ले गई। फुलवा के कहने पर बहनोतिन को रात्रि में रुकना पड़ा और हिरिया शाम को घर आ गई। फुलवा के साथ स्त्री भेष में उदल ने पंसासार खेला और हवा चलने पर उदल की साड़ी का पल्लू उड़ा, जिससे कमर में बंधी कटार दिखाई दे गई। तब फुलवा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम उदल हो, मुझसे विवाह कर लो। उदल ने कहा कि मैं चोरी से ब्याह नहीं करूंगा, बारात लेकर आऊंगा, साथ भावना विधिवत पर आऊंगा। तब फुलवा ने कहा कि मेरा भाई मकरंद बहुत बलवान है, तुम उससे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ काठ का घोड़ा अजेय बाण है, जिनकी मार से कोई बच नहीं सकता। आला खंड में वर्णन है, काठ का घोड़ा बाण अजीता, सेल सनीचर है गणमाए, जिनके मारे लश्कर बिछले, कोई सुर ना आड़े पाँव। उदल को प्रातः हिरिया वापस घर लेवा आई। उदल ने सारी बातें ढेबा को बताई। तब ढेबा ने कहा कि मुझे भी फुलवा को देखना है। तब उदल और ढेबा जोगी वेश में नाचते गाते राजा के दरबार में गए और वहां नृत्य दिखाया, वहीं फुलवा को देख लिया। उदल का सब धन नरवरगढ़ में ही खर्च हो गया, इसलिए ढेबा और उदल दोनों महोबा लौट आए और ढेबा ने राजा परमाल से बहाना बनाया कि नरवरगढ़ की चुड़ैलों ने उदल को परेशान किया, उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज कराने में सब पैसा खर्च हो गया, इसलिए हम काबुली घोड़े नहीं खरीद पाए और वापस महोबा आ गए। इससे राजा परमाल दुखी हुए, परंतु उदल की भाभी सुनवा ने कहा कि उदल को मेरे पास भेजो, उसके मन में बैठी चुड़ैलों को मैं भगा दूंगी। सुनवा के पूछने पर उदल ने सच सच बता दिया कि वह फुलवा से विवाह करना चाहता है। तब सुनवा के कहने पर आल्हा ने सभी राजाओं को न्योता भेजा और 8 की यात्रा करके नरवरगढ़ पहुंचे और 8 पहले सेना का डेरा 12 तक डाल दिया। ब्याह की पहली रस्म एपनवारी नैंग के लिए मलखान ने रूपना को राजा नरपति के दरबार भेजा, जहां रूपना ने 8000

0: छत्रियों व राजा विजय सिंह सिलहट को हराकर 500 छत्रियों को मारकर ए बनवारी उठाकर वापस अपने डेरा में आ गया। इससे नरपति ने पुत्र मकरंद को युद्ध के लिए भेजा। मलखान से मकरंद का युद्ध हुआ। युद्ध में 4 घड़ी तक गोला बरसे व 4 घड़ी तक सिरोही चले। मकरंदी ने तीर तलवार से मलखान पर चोटें की, परंतु मलखान ने सभी चोटें बचा ली। तब मकरंदी अपने महल आया। उसने काठ का घोड़ा, अजय बाण उठाया और जादूगरनी हिरिया मालिन को साथ लेकर युद्ध मैदान में आया। युद्ध में मकरंदी ने मलखान की सभी चोटें बचा ली। मकरंदी की चोट से मलखान की घोड़ी लंगड़ी हो गई, इसलिए मलखान 5 वृक्षों के पास सुरक्षित ठहरे रहे। मकरंदी ने महोबा के सभी राजाओं को कैद कर लिया। तब उदल 22 हौदा पार करके मकरंदी से युद्ध करने आया। तब हिरिया ने मकरंदी से कहा कि उदल को मारो मत, मैं तुम्हारा कार्य जादू से सिद्ध करूंगी। हिरिया ने उदल के घोड़े को जादू से शक्तिहीन कर दिया। तब मकरंदी ने उदल को बंदी बना लिया। तब ढेबा ने आल्हा को सूचना दी कि मकरंदी ने उदल को बंदी बना लिया। तब आल्हा ने ढेबा को महोबा भेजा। ढेबा शीघ्र ही आल्हा की पत्नी सुनवा को लेवा लाया। सुनवा ने महोबा में देवी से युद्ध जीतने की प्रार्थना की थी। देवी ने वचन दिया कि मैं मकरंदी के काट के घोड़ा अजीता बाण व शैल सनेश्वर को शक्तिहीन कर दूंगी, और देवी ने अमृत भी दिया। आल्हा ने अपने मरे सैनिकों पर अमृत छिड़का, जिससे वे जीवित हो गए। मकरंदी का काठ का घोड़ा अजीता बाण शैल सनिश्चर शक्तिहीन हो गए, और युद्ध में मलखान ने मकरंदी को कैद कर लिया। तब मकरंदी के पिता नरपति ने हार मानी और उदल व महोबा के सभी राजाओं को कैद मुक्त कर दिया और बेटी फुलवा का ब्याह कराने को तैयार हुआ। तब आल्हा ने भी मकरंदी को कैद मुक्त कर दिया। इतने में उरई के राजा माहिल आ गए और राजा नरपति को भड़काया कि मंडप में भावरे पड़ने के दौरान महोबे वालों को धोखे से मार गिराना। इस कार्य हेतु 2000 छत्री कोठरी में छपा दिए। जैसे ही मंडप में भावरे पड़ने लगी कि पहली भावर पड़ने पर मकरंदी ने उदल पर तलवार चला दी, जिसे मलखान ने ढाल अड़ाकर बचा लिया। फिर सभी छिपे हुए छत्रियों ने आल्हा आदि पर वार किए, जिसे आल्हा आदि ने उनकी सभी चोटें बचाईं। तब राजा नरपति ने गंगा की कसम खाई कि अब वह छल नहीं करेगा, और भात खाने के लिए उदल आल्हा आदि को बुलाया और साथ में कोई हथियार ना ले जाने की प्रार्थना की। भात खाने में ऐसी परंपरा है, इसलिए आल्हा उदल मलखान आदि सभी केवल पानी पीने के लिए गड़ई यानी लोटा लेकर भात खाने गए। वहां भी नरपति के सैनिकों ने आल्हा आदि पर धावा बोल दिया। तब आल्हा आदि ने गड़ई से सैनिकों को मार भगाया, जिसका आल्हा खंड में वर्णन इस प्रकार है। लेके गड़ुआ चले घर हुआ, और चौकी में बैठे जाएं, भात परोसो सबके आगे, मकरंद छत्री लिए बुलाए। भात खान नहीं तिन पाए थे, तौलो चलन लगी तलवार, लेके गड़ुआ उठे महुबिया, ओ छत्रिन को मारन लाग। 3 घड़ी भर गड़ुअन मारो, सबने पाटा लिए उठाए, हन के पाटा जही के मारे, तेह धरती में दे गिराए। छत्री भाग गए नरवर के, तब नरपत ने कही सुनाए, ऐसे छत्री महोबे उपजे, काहे न राज करें परमाल। इस प्रकार युद्ध जीतकर बारात महोबा आ गई। रानी मलना आदि ने बहु फुलवा के आगमन पर खुशियां मनाई।
1: हिंदी में कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एलसी अनुरागी से पुनः प्रसारित वार्ता, महोबा की वीर उदल के ब्याह की लड़ाई। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है राजपूत फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्श ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक

0: बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आइए अब सुनते हैं डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: देसी पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: निशान फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बावरा के गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब सुनते हैं फिल्म गुमराह का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रवि का।

AIR at 90. कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए चरस फिल्म का गीत आनंद बख्शी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। हिंदी में समाचार और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस

0: योजना का लाभ मिलेगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी, कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक।

0: है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का भाग 13। शीर्षक था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म प्रेम बंधन से, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9

0: तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म दूसरा आदमी का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत मजरूह का है और संगीत राजेश रोशन का।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाए इस दूसरा आदमी फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हमारे कलाकार हैं लीलाधर राजपूत, ढोलक पर हैं कमलेश कुमार, बैंजो पर संजय वंशकार और झींका पर प्रेम कुमार सोनी। आरंभ करते हैं इनकी गाई चेतावनी से।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: लीजिए अब सुनिए लोक शैली बद्ध गीत लीलाधर राजपूत से।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी

0: भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मात पिता से बड़ा कोई भगवान है।
4: लोकशैली बद्ध गीत सुनिए।

इसी लोक शैलीबद्ध गीत के साथ ही बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। इसमें आज हमारे कलाकार थे लीलाधर राजपूत, ढोलक पर इनके साथ थे कमलेश कुमार, बैंजो पर संजय वंशकार और झींका पर प्रेम कुमार सोनी। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। श्रोता, हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सुरों की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये केवल दो व्यक्तियों का नाम नहीं बल्कि भारतीय संगीत के उस स्वर्ण युग का नाम था जिसने कई दशकों तक देश की हर पीढ़ी को थिरकने और गुनगुनाने पर मजबूर किया। लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा की यह जोड़ी उस दौर में एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी जिसने हराना या जिसकी बराबरी करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इनकी शुरुआत बहुत ही साधारण ढंग से हुई थी। लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बजाने में माहिर थे तो प्यारेलाल जी के हाथों में वायलिन का ऐसा जादू था कि बड़े बड़े संगीतकार भी दंग रह जाते थे। ये दोनों महान संगीतकार A.R. कुरैशी साहब के शागिर्द थे। जब 1963 में फिल्म पारसमणि में इन्होंने पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत दिया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह जोड़ी आने वाले 30 सालों तक भारतीय सिनेमा पर राज करेगी।

अगर आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को करीब से देखें तो पाएंगे कि ये लोग म्यूजिकल आर्टिस्ट थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी विविधता। आज के संगीतकार अक्सर एक शैली में बंध जाते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हर फिल्म के साथ अपना रंग बदल लेते थे। दोस्ती फिल्म का संगीत सुनकर अगर आंखों में आंसू आ सकते थे तो अमर अकबर एंथनी का संगीत सुनकर पैर खुद ब खुद थिरकने लगते थे। इन्होंने भारतीय लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का जो मिश्रण तैयार किया वो आज भी संगीत सीखने वालों के लिए एक मिसाल है।

0: गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
0: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, प्यारे लाल जी का वायलिन का जो काम था उसने हिंदी गानों को एक अलग ही गहराई दी। उनके गानों के इंटरल्यूड यानी गाने के बीच में जो संगीत होता है इतने प्रभावशाली होते थे कि वे खुद में एक कहानी कह देते थे। मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों ने अपने कैरियर के सबसे यादगार गाने इन्हीं की धुनों पर गाए। ये रेशमी जुल्फें, मेरे महबूब कयामत होगी, ओम शांति ओम, ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि एक संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने 500 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इन्होंने संगीत को एक व्यवसाय से आगे ले जाकर उसे एक भव्य कला में बदल दिया। कर्ज फिल्म के संगीत को ही देख लीजिए, जिसमें साउंड इंजीनियरिंग और म्यूजिकल अरेंजमेंट का जो अद्भुत नमूना पेश किया गया था वो आज भी दुनिया भर के संगीतकारों के लिए एक केस स्टडी है। इन्होंने अपने दौर के हर बड़े सितारे को उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में दी, चाहे वो राज कपूर हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो या अनिल कपूर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत में वो सादगी और भव्यता का संतुलन बनाया था जो हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों को अपना लगता था। गांव का एक साधारण आदमी भी उनकी धुनों को गुनगुनाता था और शहर का एक शास्त्रीय संगीत का प्रेमी भी उनकी बारीकियों को सराहता था।

श्रोताओं, 1998 में जब लक्ष्मीकांत जी का निधन हुआ तो एक युग का समापन हो गया। प्यारे लाल जी का संगीत के प्रति समर्पण आज भी जारी है, लेकिन वो जादुई जोड़ी अब सिर्फ यादों में है। आज जब हम शोर शराबे वाले संगीत के बीच खो जाते हैं, तब ये पुराने नगमे हमें वापस उस जमीन से जोड़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल केवल नाम नहीं, वे संगीत का वो आकाश है जिसके नीचे हिंदी सिनेमा की कई पीढ़ियों ने अपने सुरों को संवारा है। उनकी विरासत उनके गानों में अमर है, और जब तक दुनिया में संगीत रहेगा, इन दो महान कलाकारों की गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी। आज जो गीत हमने लिए थे वो थे, फिल्म दाग का गीत था, मेरे दिल में आज क्या है दो रास्ते का गीत था, दिल ने दिल को पुकारा, संतोष फिल्म का गीत था, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी, महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत था, इतना नहीं महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत हमने शामिल नहीं किया, और ये जो अंत में हम पेशकश लेकर आ रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में, इस महान संगीतकार की जोड़ी की याद में, वो है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपके समक्ष।

0: एक ही संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल है, सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। मवई विकासखंड के दाढ़ी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंटर खटिया में वन्यजीव निगरानी को वैज्ञानिक बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंडला, बालाघाट और डिंडौरी सहित 7 वन मंडलों के 70 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रतिभागियों को एमएस ट्राइब मोबाइल ऐप के माध्यम से वन्यजीव निगरानी, गश्त और डेटा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की रोकथाम संबंधी जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण से 6 भागों की मौत के बाद प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। संक्रमण रोकने के लिए मुख्य क्षेत्र में लार्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वायरस के प्रसार और बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। लार्ज संचालकों ने आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की गई। कोर बफर वनमंडलों और पेन अभयारण्य के 13 परिक्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया। पहले दिन 306, दूसरे दिन 333 और तीसरे दिन 263 गिद्ध दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और राज गिद्ध की पहचान हुई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत मंडला पुलिस ने 1 से 6 जून तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ DIG विनीत जैन ने किया। कार्यक्रम में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन शिक्षण संस्थान मंडला ने मां नर्मदा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने घाट की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश क्षत्रिय और निदेशक अखिलेश पांडे ने जल संरक्षण और जन भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 25 से 31 मई तक नो टबैको सप्ताह मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम बताए। जिला नोडल अधिकारी डॉ. रानी महारावी ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जे सोबा संस्था ने गोंडी पब्लिक ट्रस्ट भवन में आयोजित समारोह में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय के टॉपर्स और प्रावीण्य ने सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व साइकिल दिवस पर 148वीं वाहनी CRPF ने मंडला साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली। कमांडेंट विक्रांत सारंग पाणी के निर्देशन में आयोजित रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। रैली में CRPF जवानों, स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गोंडवाना साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शनी और संगोष्ठियां कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहीं। चिटका परमाणु परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कौंची माल स्थित R&R कॉलोनी में शुरू हो गया है। मंत्री संपतिया उइके ने परिवारों का गृह प्रवेश कराकर प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। प्रभावित 330 परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त नया आवास दिए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत महिष्मती घाट पर विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर राहुल नामदेव, धोटे सहित अन्य अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और औषधीय पौधे लगाए। आयुष विभाग द्वारा

1 जून से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास सत्र 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम एमपी सेडमैप और परम फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए केयर थेरेपिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र बिछिया में दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका परिषद मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने और ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए हितग्राही नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आरंभ करते हैं अनुराधा पौडवाल के गाए इस भजन से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में अहमद वासी का लिखा कलाम।

0: Akashwadi at 90.
1: लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में सुदर्शन फाकिर का लिखा गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म की एक धुन।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में सावन की घटा फिल्म का गीत। गीत SH बिहारी का है और संगीत OP नैयर का।

इसी के साथ मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सब रंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ही आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आपके पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइश कार्यक्रम आपकी पसंद। मेल लिखने के लिए हमारा ईमेल आईडी है AIR छतरपुर 1976@gmail.com। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म मैंने प्यार किया से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली का गीत और राम लक्ष्मण का संगीत है। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, जयपाल यादव। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम वर्मा, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। हालांकि कुछ और मेल आई हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। ये मेल लिखी है नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई, प्रीतेश सिंघई और पूरा सिंघई परिवार। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब आरजी वाह 844D, ऐसा लिखा है इन्होंने, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूलाल जयपाल, खलीफों से खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।

व नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली पेशकश।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आशिकी से अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का, पसंद आप सभी की। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाही नाज और नाजिया नूरीजा नाज। ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सहारनपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य और सक्षम शाक्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, प्रंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहारकर, निर्मला नेहारकर, विशाल नेहाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौरिया और आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौरिया। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर

शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। मंसूरी, रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा, शाबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। धनौरा विटाली, तहसील नांदूरा, जिला बुलडाढ़ा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना, थाना नराहट, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव, शीला नामदेव, रोशनी। ग्राम बछई, थाना नराहट, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से दिलीप कुमार नामदेव, रानी नामदेव। ग्राम व पोस्ट सिद्धवाहा, थाना मेहरौनी, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से पप्पू नामदेव, ममता नामदेव, विनीता नामदेव, राजकुमार नामदेव। ग्राम भदौरा गुढ़ा, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्रजकिशोर नामदेव, सुखबती नामदेव, अमित कुमार नामदेव, हेमलता नामदेव और शिवम नामदेव। हिंगोली, महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। अशोक सिंह ने यह पत्र लिखा है जबलपुर मध्य प्रदेश से, और इनके साथ है सुनीता सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह। रिंगनी, छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांव फ्रांसी, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। मोटक्का माफी, जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। वंडिग खेड़ा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। किशनगंज, बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी। गांधी पार्क, मनपुरा जिला, शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है आशिकी।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है फिल्म दिल लगी से, रूप कुमार राठौर व साथियों की आवाज, जावेद अख्तर का गीत और जतिन ललित का संगीत। पसंद आप सभी की। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। ग्राम खकल तहसील कौच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनका समस्त परिवार। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। एक ये मेल है राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम कुमारी सेन, कुमारी सपना सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, मम्मी द्वारिका बाई सेन, मनीषा बाई चौधरी। आप सभी मां नर्मदा श्रोता परिवार शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी। ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सौजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से।

कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सूरभी नामदेव, पायल नामदेव और उनके मम्मी पापा, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, गमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से सचिन अहिरवार और विशाल वर्मा, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से हैं कृष्ण कुमार गुप्ता। और कोई मेल अगर है तो देख लेते हैं। बालकिशन, ये है गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम।
1: ध्वनि की तरंगों से मुखरित होते शब्द जन जन की वाणी बन साकार करते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जो अपने विविध रूप और रंग में, नाम और काम में, शिक्षा और सूचना लिए मनोरंजन का सशक्त और जीवंत उदाहरण बन समय के साथ 90 वर्षों से गतिमान है। आज यानी 8 जून 2026 दिन है पूर्णता का, दिन है उत्सव का, अपनी खुशियों को साझा करने का, दिल की बात कहने और सुनने का।

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधीर श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से और विशेषज्ञों से। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी बात हुई उन सब से जो जुड़े हैं आकाशवाणी से, महसूस करते हैं आकाशवाणी को और अपनी बातों, विचारों और मशवरे से समृद्ध करते हैं आकाशवाणी को। श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता वर्मा, आप प्रिंसिपल हैं एम्स नर्सिंग कॉलेज में। नमस्कार ममता जी।
1: नमस्कार।
0: आप ये इस बात को बहुत बेहतर जानती हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में यात्रा कर रहा है और 8 जून को इसके 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आकाशवाणी को लेकर आपकी अपनी कोई खूबसूरत सी याद या कोई ऐसी बात हो जो आप साझा करना चाहें आकाशवाणी के साथ और सुनने वालों के साथ?
1: जैसे ही आपने यादों की बात करी तो मेरा दिल और दिमाग करीब 30 साल पहले की एक घटना पे चला गया जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ।
0: जी।
1: मैंने इंदौर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। ये सन 1996 की बात है
0: जी,
1: जब मैंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और जो कि आकाशवाणी ने आयोजित करी थी।
0: अच्छा।
1: ये वाद विवाद प्रतियोगिता एड्स रोग के ऊपर थी। और जब मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता आकाशवाणी ने आयोजित की है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई सिर्फ भाग लेने से। उस समय मेरी इच्छा थी कि आकाशवाणी आयोजित कर रहा है तो मुझे भाग लेना है।
0: जी।
1: आकाशवाणी से मेरा लगाव इस तरीके से भी था उस समय सन 1996 में, क्योंकि बचपन से मैंने अपने पिताजी को ट्रांजिस्टर पे आकाशवाणी सुनते हुए देखा था, तो मेरे लिए वो आकाशवाणी कुछ ऐसा होता था कि कोई एक बहुत दूर की बात है, कोई भव्य सी चीज है जिसको सिर्फ सुनना मेरे लिए, जिसको सुन के मैं बड़ी हुई थी।
0: जी।
1: और करीब 20-22 साल बाद उसी आकाशवाणी द्वारा किसी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था जो कि मेरे सब्जेक्ट मतलब स्वास्थ्य से संबंधित था, तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लेना अपना सौभाग्य समझा।
0: बहुत बढ़िया।
1: ये मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैंने काफी तैयारी करी थी और खूब बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद में मैंने कोई तो भी एक मतलब पोजीशन लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं विजेता रही उस प्रतियोगिता में। और मुझे मंच पे बुलाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट के सामने जब मुझे वो प्रशस्ति पत्र दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो यूनिवर्स ने, जगत ने, जिसे कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। जो बचपन से मैं ट्रांजिस्टर पे छोटा सा सुनती थी, जो आकाशवाणी मेरे कानों में घुलता था, उसी आकाशवाणी द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में मैं

0: मैंने कोई खिताब जीता, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा मेरा उत्साह वर्धन किया गया। जब मैंने वो पुरस्कार लिया तो मुझे ये बताया गया कि आपके द्वारा बोले गए भाषण की रिकॉर्डिंग हुई है जो कि प्रसारित की जाएगी।
1: अरे वाह।
0: इसके बाद ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग मैं सुन नहीं पाई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे बचपन की स्कूल की एक सखी थी उनकी माँ ने सुना।
1: अच्छा।
0: और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरी दोस्त को बताया और मेरी दोस्त ने कहा, ममता तुम्हारा भाषण वाद विवाद वाला मेरी माँ ने रेडियो पे सुना और उन्होंने ये कहा कि ममता को कहना कि वो बहुत अच्छा भाषण बोलती है, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया।
1: बहुत अच्छी बात है। आपकी तो बड़ी खूबसूरत सी याद जुड़ी है आकाशवाणी से, लेकिन ये याद दोहराते हुए आपने एक चीज कही थी कि जब आपके पिताजी इसे सुनते थे तो ये आपको एक बहुत भव्य सी चीज लगती थी। आकाशवाणी की यात्रा यदि आपके उस वर्ष 96 से भी अपन तय करें यहाँ तक, तो भी एक लंबा वक्त हो गया है, 30 साल पूरे हो गए हैं 96 से 2026 तक। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 30 वर्षों में आकाशवाणी अपनी उसी भव्यता के साथ खड़ी है?
0: जी मुझे बिल्कुल लगता है, मैं बहुत ठोस रूप से इस चीज को महसूस करती हूँ कि आकाशवाणी अभी भी उन दिलों में वैसी ही धड़कती है जैसे 25 साल पहले या 50 साल पहले धड़कती थी। और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ इसका फॉलो अप ऐसा हुआ कि 1996 के बाद में वो ट्रॉफी मैंने अपने घर में रखी और पिछले 2 साल पहले ही मैं किसी एक कार्यक्रम में अपनी छात्राओं को लेकर के गई थी और वहां पर मुझे आकाशवाणी के मनीष जी मिले। मुझे नहीं पता था वो आकाशवाणी से हैं, उन्होंने आकर के उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मेरा मत जानना चाहा और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैडम मैं आकाशवाणी से हूँ, तो दिन में मेरी आंखों से तारे चमकने लगे। मुझे वो ही याद आ गया कि देखिए ये कितनी बार आकाशवाणी घूम फिर के मेरे इर्द गिर्द 10 साल 20 साल में लौट करके आता है। तो जो आपने कहा कि जो 90 वर्ष में आकाशवाणी की भव्यता है, जैसे समुद्र की लहरें लौट करके जा करके पलट के वापस आती हैं, मेरे जीवन में आकाशवाणी इसी तरीके से किसी न किसी रूप में जा करके पलट के वापस आया और वो भव्यता या वो जो लगाव जिसे कहते हैं वो एक फिर से एकदम से जैसे कली खिलती है पुष्प पुलकित होता है वैसे फिर से हो जाता है। और आज आपसे बात करके देखिए फिर से मैं उतनी ही खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही रेडियो में बचपन में सुनती थी, वही मुझे आकाशवाणी से दोबारा रिकनेक्ट करवाया और आज फिर मैं आकाशवाणी से आपके थ्रू कनेक्ट हो रही हूँ।
1: खुशी जो है, जो एक संतोष है, ये आपकी आवाज से आपकी बात से छलक रहा है। हम चाहेंगे कि सागर की ये लहरें यूं ही आती जाती रहें, और सागर की लहरें जब आती जाती हैं तो कई बार वो पारितोष के रूप में हमारे लिए कोई रत्न कोई मोती जरूर लेकर आती हैं। तो आकाशवाणी की ये लहरें अथाह समुद्र की तरह यूं ही बढ़ती रहें, चलती रहें। बहुत अच्छा लगा ममता जी आपकी याद को जानकर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी इस याद से जरूर प्रफुल्लित हुए होंगे।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जो कवि हैं हिंदी और बुंदेली के।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आकाशवाणी के ये शक्ति सामर्थ्य के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से समूची टीम को, श्रोताओं को, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आकाशवाणी के संदर्भ में ये कहना बहुत जरूरी है कि ये बहुत लोक मंगलकारी साधन है, जन जन को आकृष्ट अभिभूत करने वाला, यूं कहना चाहिए अपने आरंभ काल से 70-75 वर्ष तक का आकाशवाणी का एक छत्र राज्य रहा, एकाधिकार रहा, इसकी उपस्थिति बहुत बहुत आकर्षक रही। राष्ट्रीय उत्कर्ष के संबंध में, खोज खबर के संबंध में, सारे तथ्य पर खोज खबरों का प्रदान करना, मनोरंजन करना, देश को बहुत गर्वित करने वाला माध्यम हुआ। इसका जो स्वर्ण काल था, तो हम आपको सबको मालूम है कि पूरा देश रेडियो को अहर्निश लगा रहता था
2: जी।
1: अगर कमेंट्री आ रही है तो लोग अपने बिस्तर पर रेडियो लिए सुनते थे, गीत आ रहे हैं तो लोग खेत खलिहानों में उसको सुन रहे हैं, लोकगीत आ रहे हैं तो गांव का, देहात का, नहर शहर का, सारे लोग उसको सुना करते थे। वैसे भी वेदों के पहले श्रुतियां थी, सारा कुछ सुनने ही उससे हुआ करता था।
2: बिल्कुल।
1: और जब सभ्य संसार हुआ तो ये लोग, यहाँ ये भी बात थी अपनी संस्कृति में कि व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए और बहुपठ होने चाहिए, वही योग्य माना जाता था जो बहुश्रुत हो
2: जी।
1: तो सभ्य संसार का एक बड़ा विलक्षण साधन है और हम देखते हैं कि इसमें पूरा देश, इसका जब स्वर्ण काल हुआ तो सारी बातें आकाशवाणी ने कवर की, संगोष्ठियां हुई, रूपक हुए, नाटक हुए, काव्य गोष्ठियां हुई
2: जी,
1: शास्त्रीय संगीत हुआ तो सुगम संगीत भी हुआ, सुगम संगीत के बाद बच्चों के लिए भी संगीत में ताल कथाएं बनाई गई, रूपक हुए, नाटक हुए, फिल्मी गाने तो इतने हुए, कुछ न पूछिए। और एक बात और भी है, 70 का जो दशक था उस समय के फिल्मी गाने बहुत ही साहित्यिक थे
2: जी।
1: बहुत लोगों को उनकी जुबान पर बैठ गए थे, आलेख हुए, विशिष्ट विभूतियों के पर केंद्रित तो बहुत संगोष्ठियां हुई, पर्व विशेष पर रूपक विशेष हुए, लोकगीतों के संस्कार।

0: चार गीतों के सारे कुछ आकाशवाणी ने कवर किए। कहना तो ये चाहिए कि आकाशवाणी शास्त्र की वाणी है
1: जी।
0: क्योंकि शास्त्र में जो लिखा वो आकाशवाणी में आया, जो लोक में हुआ वो आकाशवाणी में आया। स्वर की और संगीत की वाणी है, कला और संस्कृति की वाणी है, राजनय और नीति की वाणी है। और एक बात और है, सारी भाषाएं देव भाषा से प्रसूत हैं और उसमें अपनी जो राजभाषा है ये राजभाषा की वाणी है। और राजभाषा ही नहीं, तमाम विभाषाओं में विरचित कथित संकल्पित सृजनों के मूल मंत्रों के उच्चारण के विशाल व्योम में गुंजारित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम। क्या क्या नहीं किया आकाशवाणी ने विचारों के गद्य पद्य के स्वरूपों को, गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं उनको वैखरी के वैखरी अर्थात कंठ से निकले हुए स्वर लोक श्रुत हुए और कंठार बन गए। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आकाशवाणी मेरे विचार में अनेक कालखंडों की बहुत कीमती वाणी है, बहुत कीमती वाणी।
1: आपकी इस बात से निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। हम आपसे एक शुभकामना चाहेंगे इस 90 वर्ष पर।
0: इस 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी आकाशवाणी के इस आमोद भरे अवसर पर मैं अपने हृदय तल से आकाशवाणी का आदर अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को मैंने शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।
1: कोई छोटी सी कविता या कोई छंद सुनाएंगे आप?
0: जी जी बिल्कुल, एक छोटी सी कविता रखता हूँ। मैं लोक भाषा का कवि हूँ तो मैं एक गीत छोटा गीत रखता हूँ, तो सुनिए। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा गाँव की गोरी का मन। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा होता है गाँव का मन। घर क्या है छप्पर छानी के महल गढ़ दिए हैं, फिर पीरे पीरे गुबरी ले वर्क जड़ दिए हैं। सब अचला के अंचल से निकले हैं चाल चलन, तुम क्या जानो कैसा गाँवों की गोरी का मन। सहज सुलभ संवादों से झर पड़ते नंदन वन, सहज सरल संवादों से झर पड़ते नंदन वन। तुम क्या जानो कैसा होता है गाँवों का मन, तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन।

0: हमारे साथ जुड़ी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी नुसरत मेहंदी।
1: स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में। एक लिसनर की दृष्टि से, एक शायरा की दृष्टि से, उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर की दृष्टि से और तमाम सारे आपके जो जीवन के आयाम हैं, उन सभी दृष्टियों से आप आकाशवाणी को किस रूप में महसूस करती हैं?
2: सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत मौके पर आपने मुझे याद किया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी
1: जी
2: बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर लेखनीय दुनिया में हूँ, चाहे वो मेरा प्रोज का, गद्य का क्षेत्र हो या शायरी का क्षेत्र हो,

0: इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरी जीवन यात्रा, मेरी सृजन यात्रा जो शुरू हुई थी वो आकाशवाणी नजीबाबाद का जो रेडियो स्टेशन था वहां से हुई थी।
1: अच्छा।
0: मेरी पहली कहानी मैं क्या हूँ आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी।
1: अरे वाह।
0: और वहीं से मेरी सृजन की यात्रा शुरू हुई है। तो मेरे जीवन में तो आकाशवाणी का इतना महत्व है कि शायद दूसरे किसी के जीवन में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अगर जो हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें आकाशवाणी नहीं होती, रेडियो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो बहुत सारे टाइम था कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ रेडियो ही होता था जिससे सूचनाएं मिलती थी और हम लोग अपडेटेड रहते थे
1: जी।
0: तो जितने भी जीवन के आयाम आपने जिक्र किया, चाहे वो मेरा उर्दू अकादमी का हो या शासन के किसी भी विभाग का मामला हो, आकाशवाणी के बिना इनकी सारी सार्थकता अधूरी है। क्योंकि आज भी, ये पुराने जमाने की बात तो मैं कह ही रही हूँ कि उस समय तो कोई माध्यम था ही नहीं, लेकिन अगर आज का भी हम जिक्र करें और बेशुमार माध्यम है सोशल मीडिया के, लेकिन उसके बावजूद जब आपका नमस्कार भोपाल या और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होते हैं तो हमारे पास आज भी फोन आते हैं। क्योंकि आप लोग इतने सक्रिय हैं कि एक तो हर कार्यक्रम पे नजर रखते हैं और हमें नहीं कहना पड़ता। ये आप लोग की सक्रियता, उसको साधुवाद और प्रणाम करती हूँ। और जब वो प्रसारित होता है तो हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, फोन आते हैं कि हमने आज आपका ये सुबह सुना और हम आज आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही शानदार यात्रा रही है, बहुत ही सफल और बहुत ही सार्थक यात्रा रही है आपकी।
1: बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे आप जैसे सुधे श्रोता और आप जैसे साहित्यकारों से जुड़कर, कलाकारों से जुड़कर ही आकाशवाणी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। यदि शुभकामनाओं की बात की जाए तो आप आकाशवाणी के भविष्य को लेकर क्या कामना करना चाहेंगी?
0: मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप लोग जिस तरह से प्रसारित करते हैं इसी तरह के और कुछ और इनमें आयाम आप जोड़ सकते हैं। वैसे आपके यहाँ सब कुछ शामिल है क्योंकि मैं आपके दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होती हूँ, मुशायरा कवि सम्मेलन भी होते हैं। कुछ चीजें हैं कि जैसे एक शायर को बैठा लेते हैं और दूसरा एक उसके कलाम को कंपोज करके गाता है, कलाम शायर शायद पहले कभी हुआ करता भी था। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे हमारा आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी की इस 90 वर्ष की यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं नारायण व्यास, जो पुरातत्वविद हैं और इस कार्य के लिए आप पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं।
1: नमस्कार जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय तक अपने कार्य में लगे रहे निरंतर, और आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको शासन से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। एक पुरातत्वविद की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से, या एक सामाजिक दृष्टि से आकाशवाणी का क्या महत्व महसूस करते हैं आप उसकी इस लंबी यात्रा में?
1: ये आकाशवाणी का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व, हम बचपन से ही देख रहे हैं आकाशवाणी को, सुनते हैं। और अभी जब से मेरी नौकरी 1978 में लगी है, मेरी जो 1980 के बाद तो पता नहीं कितनी वार्ताएं आपके आकाशवाणी से हुई भी है पुरातत्व के विषय में। तो उसमें पहले ये जो यहाँ 1992 के करीब, तो एक महीने में 4 वार्ताएं मेरी करते थे।
0: अच्छा।
1: उसमें ये जो भोपाल के आसपास के जितने पुरातत्व स्थल होते हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। और कई बार हम लोग तो कह टेलीकास्ट यहाँ पर बैठ के जो हुआ है, जो पुराने जी है यहाँ, और हम दो ऑफिस के लोग थे, हाँ। वहीं बैठ के आकाशवाणी में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश को कंट्रोल करके और सब उनकी समस्याएं जो पुरातत्व की नई नई खोज क्या होती है, ये पूरी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हमने वो सब जनता को दी। और कई में ऐसी सूचना भी मिली उनसे, लोगों से, जिसमें हम जाके साइट विजिट किए, वो चीज हमें मिली भी। क्योंकि पुरातत्व का ऐसा विषय है, क्योंकि जनता को जोड़ने के लिए आकाशवाणी का ऐसा बहुत बड़ा महत्व रहा है। विशेष रूप से हम जो नए नए उत्खनन करते थे उनकी जो जानकारी हमसे पूछते थे डायरेक्ट लाइव आपके यहाँ से होता था, तो हम बताते थे उनको कि कैसे ये पुरानी संस्कृति की खोज कैसे की जाती है, पुराने टीलों के किनारे नदी किनारे घूमते रहते थे। लेकिन क्या है कि हम खोज तो कर लेते हैं लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेगा, लेकिन जो रेडियो आम जीवन में जो रहता है गाँव में सब जगह, वो लोग सब सुनते, हम उनको बताते हैं कैसे संस्कृति की खोज होती है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और उनको बताते देते भी है कि इतिहास पुरातत्व दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, पुरातत्व जमीन के अंदर है, इतिहास बाहर है। तो आकाशवाणी से जो ऐसी चीजें जाती लोगों की, तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। और आपकी आकाशवाणी की टीम के साथ हम कई स्थानों भी गए, सांची में भी किया, खजुराहो में भी किया, और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट साइट से जो विश्व धरोहर से संबंधित है। सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रम हमारा सांची में हुआ था और खजुराहो में हुआ था। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से कितना पुरातत्व का प्रचार प्रसार हुआ है, ये हम आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये रेडियो कैसा है, हम चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, टेलीविजन नहीं देख सकते, सुन सकते या देख सकते हैं, उसके लिए देख देख बैठना पड़ता है, पर रेडियो तो हम कहीं भी ले जाके सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारा पुरातत्व का बहुत प्रसार प्रसार हो। और मैं कहता हूँ व्यक्तिगत भी मुझे लोग जानने लगे कि ये तो व्यास जी हैं आकाशवाणी से, कई बार हम इनके ये कि मुझे शोध लेख भी होते ये सुनते थे पहले, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ आर्य साहब भी थे, उनके समय भी हुआ, उसके पहले भी कई लोग होते थे। तो देखो हम लोग पैसों की चिंता नहीं, हम देखते हैं हमारी जनता के साथ में कितने जुड़ाव रेडियो के माध्यम से होता, वो हम लोगों का बहुत हुआ। तो हमें तो आज भी बड़ी प्रसन्नता है, तो मैं तो ये स्थापना के जो 90 वर्ष हो रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एहसान भी मानता हूँ कि आपके माध्यम से हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे साथ हैं उदयन वाजपेयी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि उनकी पारखी दृष्टि समाज के हर अंग पर, हर वर्ग पर, हर आयाम पर पड़ती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा में रेडियो के या आकाशवाणी के समाज के प्रति योगदान की बात जानना चाहेंगे और सुनने वालों का क्या रिश्ता बन पाया आकाशवाणी से।
1: एक तो पहले मैं आपको ये चीज स्पष्ट करूं कि कभी भी रेडियो जो है वो, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में आकाशवाणी है, वो कभी भी टेलीविजन से ज्यादा दूर तक और देर तक रहने वाला मीडिया है। उसका सीधा कारण ये है कि दृश्य से ऊब और थकान दोनों होती है, जबकि सुनने से जो कल्पनाशीलता है वो जागृत होती है। इसीलिए सिनेमा में भी, जो कि दृश्य का और सुनने का माध्यम है, उसमें जो साउंड है, आवाज है, उसकी कहीं अधिक अर्थवत्ता होती है बनस्पत दृश्य के। तो इसलिए आकाशवाणी, क्योंकि ये सुनने का, श्रवण का माध्यम है, इसलिए इसका कभी भी ज्यादा महत्व बहुत सारे लोगों का के जीवन में रहा है। और एक जमाने तक तो केवल आकाशवाणी ही था, और आज भी बहुत हद तक आकाशवाणी ने कम से कम संगीत के क्षेत्र में और बातचीतों के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बना के रखी है। कई जगह विश्वसनीयता प्रश्नांकित उसकी हुई है, लेकिन ये होता है लंबे दौर में, अलग अलग किस्म के जब आप तंत्रों में रहते हैं तो ये सब तो होता है। बचपन से हमारे घर में उदाहरण के लिए फिल्मी संगीत सुनने की इजाजत नहीं थी जब हम बच्चे थे। आप समझिए 1966 या 70 के आसपास की बात है। आकाशवाणी पर उन दिनों फिल्मी गीत सुनना, कम से कम मेरी बहनों के लिए, एक तरह से उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो छुप के सुनती थी
0: जी, जी।
1: माता पिता से छिप के, लेकिन माता पिता से छिप कर जो आप काम करते हैं वो एक तरह से बचपन से ही आपकी स्वतंत्रता का प्रशिक्षण होता है कि आपकी अपनी दुनिया क्या है। आप अन्यों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, ताऊ वगैरह से भिन्न कहाँ हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से बहुत लोगों का, सिर्फ मेरी बहनें हो उसमें उदाहरण हो ये नहीं है, बहुत लोगों के लिए आकाशवाणी को सुनना उनके स्वातंत्र का प्रशिक्षण जैसा था, जो बाद में उन्होंने कई तरह से प्रकट हुआ होगा। दूसरा, उसमें शास्त्रीय संगीत जो आता था और उसमें जो बहसें हुई हैं आकाशवाणी की शुरुआत में, केसकर जब थे, अगर मुझे ठीक याद है, पहले डायरेक्टर जनरल
0: जी। सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कह लीजिए या ये दोहराना चाहूंगी कि केसकर साहब उस समय INB मिनिस्टर हुआ करते थे।
1: अच्छा,
0: और,
1: अच्छा, अच्छा।
0: जी, और पहले जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो
2: गिरिजा कुमार माथुर
0: साहब थे।
1: हाँ, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही, साहब हम हारमोनियम को की इजाजत नहीं देंगे, ये कोई एक ऐसा निर्णय नहीं था जो एक किस्म का अपने आप ले लिया गया निर्णय हो। उसके पीछे भारतीय संगीत की एक गहरी समझ थी, उसके भीतर जो परिवर्तन हुए हैं संगीत, शास्त्रीय संगीत में, उसकी जरूर अनदेखी थी, लेकिन फिर भी एक गहरी समझ थी। बहसें बड़ी दिलचस्प होती थी। हम चूंकि शुरू में हमारा जो परिवार है वो साहित्य, कला, संस्कृति आदि का केंद्र जैसा रहा है, हम सारे लोग लेखक, कलाकार या नर्तक वगैरह

0: रहे हैं तो और हैं, तो उसमें ये बहसें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि हारमोनियम में क्या सीमा है। तो फिर पता लगा कि भाई उसमें श्रुति नहीं सुनाई पड़ती, स्वर से स्वर पे आप जाते हैं और वो हमारे यहाँ संगीत में उतना महत्व का नहीं होता। हमारे यहाँ श्रुतियों की केंद्रीयता है नृत्य संगीत, वो बहुत सोच के संगीत के स्वरूप को समझ के वो बंदिश लगाई गई थी। हमारे यहाँ ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं बजता, ध्रुपद में केवल ज्यादा से ज्यादा तानपुरा बजता है और अगर थोड़ा बहुत उसको आप विस्तार करें तो थोड़ा बहुत सारंगी बजती है, लेकिन ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं होता। उसका कारण है कि ध्रुपद में जो श्रुति है उसकी केंद्रीयता बहुत अधिक है। ये बहस बड़ी पुरानी और ये संगीत पर बहस आकाशवाणी से पैदा हुई थी। ये संगीत पर एक किस्म की दार्शनिक बहस है, सौंदर्य शास्त्रीय बहस है। ऐसी बहसें आपको दूरदर्शन पर या आजकल जो बहुत सारे हजारों चैनल्स हैं जो ज्यादातर बिके हुए हैं उनमें कोई नहीं समझ में आएगी आप, उसमें कोई ऐसी बहस होती नहीं। दूसरा, आकाशवाणी ने अपने को बाजार से बहुत हद तक स्वतंत्र रखा था, क्योंकि आकाशवाणी में जो लोग हैं, यहाँ भारतीय जो नागरिक हैं, समुदाय हैं, जो सामुदायिक जीवन है वो केंद्रीय था, बाजार केंद्रीय नहीं था। दूरदर्शन के पहले क्षण से बाजार केंद्र में आ गया, समाज केंद्र से विस्थापित हो गया। तो दूसरी बात ये थी कि आकाशवाणी ने अपने को भारतीय लोगों की आवाज के रूप में, उनके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया था और अपना आकार ग्रहण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बात हमें समझने में बहुत सारे युवा लोगों को असंभव जान पड़ी,
1: बिल्कुल
0: कैसा कुछ भी हो सकता है का बाजार से कोई संबंध ना हो, क्योंकि आज तो बाजार का जो प्राधान्य है वो डरावना है, लेकिन आकाशवाणी में नहीं था, एक हद तक आज भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मुझे खुद बहुत बार अवसर मिला अपनी कहानी पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, तो मुझे अक्सर कई बार छोटी छोटी जगहों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें जो आपको हमको बताते हैं कि साहब आपकी हमने फलानी कहानी सुनी थी आकाशवाणी पे। ये वो लोग हैं जिन तक पत्रिकाएं नहीं पहुंचती, साहित्यिक पत्रिकाओं की वैसे भी हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है, हमारा मध्य वर्ग तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमारे साहित्य तो एक किस्म का बेघर साहित्य है। इस बेघर साहित्य को थोड़ी सी देर के लिए आश्रय या शरण आकाशवाणी देता रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी या कोई पत्रिका लेखक पैदा नहीं कर देती, लेकिन एक तरह से उन लेखकों को या उस संगीत को उसका उसके फैलाव के लिए को दूर तक ले जाने की जो जिम्मेदारी आकाशवाणी ने लंबे समय तक निभाई है उसका हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम मैं एक लेखक के रूप में बहुत कृतज्ञ हूँ उसका। अगली और अंतिम बात यह है कि आकाशवाणी सुनते हुए आपके आप सोचने के लिए स्वतंत्र होते, यानी वो इस तरह की, क्योंकि वो आवाज है, आवाज मूल है उसमें, उस वो आपको बांधता नहीं है, वो आपको खोलता है
1: जी।
0: तो आप सुनते समय आकाशवाणी का भले संगीत सुन रहे हो, आप भले कोई बातचीत सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई नाटक सुन रहे हो, कोई कहानी सुन रहे हो, आप खुलते हैं
1: जी।
0: और ये खुलाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए खुला हुआ नागरिक जरूरी है। एक बंद आज्ञाकारी नागरिक जो है वो डरावना होता है लोकतंत्र के लिए, वो कभी नहीं लोकतंत्र को चला सकता। तो आकाशवाणी ने एक तरह से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक हद तक भूमिका निभाई है, और हम सबको उसका कृतज्ञ होना ही चाहिए।
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आप आगे आने वाले समय के लिए क्या शुभकामना आकाशवाणी को देना चाहेंगे?
0: मैं सोचता हूँ, एक तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आकाशवाणी कभी बंद ना हो। जिस तेजी से हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होते जाते हैं उसके मैं बहुत ज्यादा उसके लिए आशान्वित हूँ कि ये बचा रहेगा। दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है
1: जी,
0: उसे अधिक से अधिक स्वतंत्र स्वयं में होती जाना चाहिए। और ये सबके लिए सही है, ये बच्चे के लिए भी सही होता है, मेरे आपके लिए भी सही होता है। हम सारे लोग अगर स्वतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारा विकास नहीं हो रहा है। उसमें ज्यादा संगीत शामिल हो, ज्यादा लेखक कवि उसमें शामिल हो, ज्यादा उसमें तरह की बातचीत हो, जितनी अभी हो रही हैं उससे और ज्यादा हो।

0: तो जैसे जैसे इस तरह का फैलाव आकाशवाणी का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, आकाशवाणी की पहुंच भी बढ़ेगी और हम भारत को एक दूसरे एक जगह को भारत की दूसरी जगह से जोड़ने का जो उसने दायित्व तो निभाया है उसका स्तर भी गहरा होता जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आकाशवाणी को देता हूँ।
1: बहुत धन्यवाद, हम भी यही चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, बल्कि यूं कहिए कि सक्रिय कोशिश करेंगे कि ये व्यापकता निरंतर बढ़ती रहे।

0: सिंधी कार्यक्रमों के हमारे कंपेयर हैं नारी लच्छवानी, जो लगभग पिछले 25 वर्षों तक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते रहे और स्वयं आकाशवाणी के एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। हमने बात की आपसे। स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी यादें, कौन सी बातें हैं जो आप आकाशवाणी को लेकर महसूस करते हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं।
1: तो मैं लगभग 25 साल तक निरंतर जुड़ा रहा आकाशवाणी से
0: जी,
1: 1969 से लेकर 1994 तक। सबसे बड़ी सौगात या सबसे बड़ा सौभाग्य हम कहें तो हमारा आकाशवाणी से जुड़ना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का, क्योंकि मैं आकाशवाणी को शुद्धता और उत्कृष्टता का केंद्र मानता था। उन्होंने अनुशासन सिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान से प्रेम करना सिखाया, स्वच्छता का पाठ, संस्कारवान

0: देता।
1: 90 वर्ष की ये यात्रा समय में बांधी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़कर इसके कई आयामों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला। आकाशवाणी को किस रूप में आप देखते हैं और क्या इसकी अपनी भूमिका रही है?
2: मैं आकाशवाणी को इस तरह से याद करता हूं कि जब 15 अगस्त 1947 को आधी रात भारत आजाद हो रहा था, उस दौरान आकाशवाणी ही वो स्वर था जिसने देश भर में आजादी की खुशी को पहुंचाया था। वहां से लेकर अभी तक की जो यात्रा है पूरी 90 वर्षों की, जितना विविध हमारा देश है, जिस सांस्कृतिक विविधता के साथ में, कला रूपों के साथ में हम जीते हैं, तो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखने वाले जो जो कारक हैं, उसमें आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की तरह मुझे दिखाई देता है। चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात हो, चाहे वो हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की बात करें, देश अगर बंधा है तो जिन

0: तारकों में बंधा है, उसमें एक आकाशवाणी भी है।
1: इस आकाशवाणी का जो वो समय था जिसे आप अपनी पहली याद के रूप में महसूस करते हैं और अभी तक की जो यात्रा है, इसमें समय में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तकनीक में बदलाव आए हैं और उससे बढ़कर हमारे आपके सोचने के तरीके और आवश्यकताओं और जरूरतों में भी बदलाव आए हैं। इस दृष्टि से आकाशवाणी किस रूप में आपको महसूस होती है?
0: क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी सूचना की विश्वसनीयता, आकाशवाणी ने शुरू से लेकर अंत तक विश्वास की परंपरा को बनाकर रखा है। आज जबकि हर हाथ में मोबाइल है, सूचना का विस्फोट का समय है, AI हमारे ऊपर आ चुका है, ऐसे समय में जब हर जगह संदेह है, हर जगह हमको अविश्वास दिखाई देता है, वहां अगर विश्वसनीयता की बात हो तो अपने तमाम प्रोग्राम्स में, चाहे वो संगीत के कार्यक्रम हो, चाहे वो वार्ताएं हैं, चाहे वो चर्चाएं हैं, चाहे वो समीक्षाएं हैं या खबरों को पहुंचाने तक का पूरा मामला है, आकाशवाणी ने विश्वास की परंपरा को कायम रखा है, जिसके आधार पर पत्रकारिता कही है या ये कही है कि खबरों को पहुंचाने का जो तरीका है, ढंग भले बदला है लेकिन विश्वास की जो बात है वो आकाशवाणी के पर्याय के रूप में हम देख सकते हैं।
1: ये वाकई में आकाशवाणी के लिए और आकाशवाणी से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जो चीज हमारे घर परिवार और समाज से भी थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो विश्वास आज भी आकाशवाणी सहेज कर चल रहा है। उसकी अगली यात्रा को लेकर जहां पर बहुत चुनौतियां हैं, क्या भविष्य या क्या अपेक्षा आप आकाशवाणी से रखते हैं?
0: जैसे मैं शुरू से एक बात जो रेखांकित कर रहा हूँ कि जितनी देश में विविधता है, आकाशवाणी उस महासागर की तरह है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखा है। चाहे वो फिल्म संगीत की बात हो, चाहे वो हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, चाहे खेल, कृषि, हमारी हेलो फरमाइश, तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, उसने देश की धड़कन को, देश की स्पंदन को महसूस किया है। अब ऐसे समय में जबकि तकनीकी रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैंने कहा कि कई तरह के अलग अलग तरह के चैनल्स भी आए हैं, उस दौर में अभी भी एक समाज है हमारा जहां तक आकाशवाणी के अलावा कोई पहुंचा नहीं है। यहाँ वो समाज केवल पहुंच वाला नहीं है, वो समाज है विश्वास वाला समाज, वो जो आप कहां बात कही जा रही है जिस पर भरोसा करता है। और आप ये अचरज की बात नहीं है, कितनी खूबसूरत बात है कि लोग जो अपने पड़ोस में अपनी बात कहने से हिचकते हैं, वे आकाशवाणी में फोन लगाकर अपनी बात कहते हैं, अपने परिवार की, अपनी समस्याएं, अपने मनोदशा को वो व्यक्त करते हैं। तो तकनीकी रूप से इस चुनौती के बीच में, जैसे पत्थरों के बीच में नदी बहती है, आकाशवाणी को शायद इस परंपरा को बनाए रखते हुए पहुंच को और विस्तारित करना होगा और विविधता को बनाए रखना होगा। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों के बीच में हम जैसे लौट रहे हैं पुरानी तरफ, उस तरह से आकाशवाणी का एरा भी उसने स्वर्णिम युग को फिर से दोहराएगा।
1: आपके इस बात को सुनके सिर्फ तथास्तु कहने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हम खुद भी चाहेंगे कि हमारी ये नदी कल कल बहती रहे, लोगों की प्यास बुझाती रहे, अपने किनारों पर हरियाली देती रहे। और कहते हैं ना कि गौमुख से निकली गंगा जब तक गंगा सागर तक नहीं पहुंचती तब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं करती है, तो ये निर्बाध चलती रहे। बस एक बात और आपसे जानने का मन हो रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक श्रोता के रूप में, आकाशवाणी की कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है आपको या जिससे आप जुड़ा महसूस करते हैं?
0: जैसे परिवार का एक, मतलब आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के बुजुर्गों ने रेडियो सुनकर, रेडियो घर में होना एक अनिवार्यता की तरह होता था। आज जब हम गाड़ी में निकलते हैं और तमाम चैनल्स के बीच में अगर विविध भारती पर आकर ट्यून हो जाता है, रेडियो लंबे समय तक वो चलता है, तो वो एक परिवार के सदस्य की तरह जो हमें सहजता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो मनोरंजन करता है, जो ज्ञान देता है, तो ऐसे तमाम चीजें एक जगह से अगर कहीं मिल रही है तो उसमें मुझे आकाशवाणी दिखाई देता है। और इसीलिए उसको हम बहुत अपनापे के साथ में, बहुत उस स्नेह के साथ में हम आकाशवाणी का नाम भी लेते हैं, उसके साथ जुड़ाव भी लेते हैं।
1: आकाशवाणी का ये जुड़ाव, परिवार का ये एक अपनापन आपसे, हमसे, कार्यक्रमों से बना रहे सदा, यही कामना हमारी भी है। आकाशवाणी की इस यात्रा में, या यूं कहिए कि कार्यक्रम की इस यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं हमारे एक युवा शायर की ओर, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं अपनी शायरी को लेकर। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस कार्यक्रम में जो केंद्रित है आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी की याद को लेकर?
0: जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस इतने अहम प्रोग्राम में मुझे

0: याद रखा। वैसे तो हमारे घर में रेडियो बहुत पहले आ गया था, जब मैंने होश संभाला तो हमारे यहाँ रेडियो मौजूद था
1: जी।
0: और उसमें हमारे घर में अक्सर मिलकर रोजाना सुबह का समाचार बुलेटिन और रात का समाचार बुलेटिन बहुत पाबंदी से सुना जाता था।
1: जी जी।
0: उसके अलावा हवा महल, और हवा महल का एक कैरेक्टर मुंशी इतवारी लाल मुझे आज भी याद है। मैं उनकी अक्सर नकल किया करता था, लोगों को हंसाया करता था उनको सुना सुना के।
1: जी।
0: फिर सबसे ज्यादा जो एक चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी, रोमांचित करती थी, वो थी हॉकी की कमेंट्री। कमेंट्री जो आती थी वो ऐसा लगता था कि पूरे हम मैदान में बैठे हुए हैं, सामने हमारे मैच हो रहा है। और वहीं से फिर मेरे अंदर हॉकी खेलने का शौक भी पैदा हुआ, मैंने हॉकी भी खेली।
1: जी।
0: फिर उर्दू के जो प्रोग्राम, हाँ नहीं उससे पहले तो बच्चों के प्रोग्राम गोपल और बाल सभा, वो मैं सुनता था जरूर, हमें सुनाया जाता था, बल्कि हमारी मदर कि ये सुनो देखो इसमें बच्चे कैसे बोलते हैं क्या सुनाते हैं, तुम भी जाना है।
1: जी।
0: तो फिर जा तो नहीं पाया उसमें, लेकिन उसके बाद फिर मैं 83-84 में मैंने ऑडिशन दिया ड्रामा के लिए।
1: जी।
0: तो 85 में मैं कामयाब हुआ और 85 से मैं आकाशवाणी का आर्टिस्ट भी बन गया, ड्रामा आर्टिस्ट। काफी ड्रामा किए उसमें, बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ा जो फायदा मुझे आकाशवाणी को सुनने का, पहले सुनने का फिर बाद में जुड़ने का, ये हुआ कि भोपाल में रहने के नाते जो हमारी शैली है बोलने की या लहजा है, उस पर जो एक एतराज या किया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है कि भोपाली ऐसे बोलने, सारे लोग नहीं, जो दूसरे लोग जो लोग बोलते हैं आकाशवाणी से, उनका बोलने का लहजा सीखा, कहाँ है और है में क्या फर्क है, मैं और मैं में क्या फर्क है। फिर मैं थिएटर से भी इसी वजह से जुड़ा, बल्कि पहले थिएटर में जुड़ गया था, बाद में आकाशवाणी में आया। तो आकाशवाणी ने सबसे ज्यादा मुझे सिखाया कैसे बोलना है। और दूसरी एक चीज बहुत जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है वक्त की पाबंदी।
1: बिल्कुल।
0: दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर 9 बजे का कोई प्रोग्राम है तो 9 बजे ही वो प्रसारित होगा।
1: जी जी।
0: तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी मैंने उतारी, उसको सीखी, और मुझे उसका जो इनाम मिला वो ये है कि मेरी बहनें जो हैं वो मुझ पे इतना भरोसा करती हैं कि नहीं इसने अगर कह दिया इस वक्त तो ये आएगा।
1: क्या बात है।
0: और इसने अगर ये काम करने का ठान लिया है तो ये करेगा। मतलब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अगर कहीं से सीखा है तो उसका इनाम मुझे घर से ही मिल गया। दूसरी तो खैर तभी जानते हैं कि आज तक दुनिया का जो सबसे ज्यादा पहुंचने वाली आवाज है वो आकाशवाणी ही पहुंचती है, भले ही कितने मीडिया आ जाए, सोशल मीडिया और ये वो सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहुंच है वो आकाशवाणी की है। और आकाशवाणी का से बहुत फायदा मुझे ये भी हुआ कि मेरा नाम भी बड़ी दूर दूर तक लोग जानने पहचानने लगे। अगर कहीं मैंने जाके अपना नाम बोले, हाँ सुना है आपका नाम, जानते हैं।
1: जी जी जी। कुछ और कहना चाहेंगे?
0: शुभकामनाएं तो ये है कि जो लोग अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आकाशवाणी से जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिखने पढ़ने का शौक पैदा होगा और उससे ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और हाँ सबसे बड़ी चीज, नपी तुली बात करने का सलीका भी वो लोग सीख सकते हैं आकाशवाणी से जुड़ करके, जो आमतौर पर लोगों में होता नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइम की जो लिमिट है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी चीज वक्त की पाबंदी, और वक्त की उस लिमिट में बहुत बड़ी और बहुत सारी बात कह देना। जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो अच्छी तरह आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़े, और अगर नहीं जुड़ते तो उसको आकाशवाणी को सुने। दूसरे जो आजकल चैनल आ गए हैं उनका अपना स्टाइल है, वो कमर्शियल है, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा सकारात्मक संदेश दिए हैं। मैं 2-4 शेर आपको सुना देता हूँ।
1: स्वागत है
0: जी। मेरी बड़ी मशहूर गजल है, मतलब उसका है कि बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है। और 2-3 शेर ही सुनाऊंगा इसके, कि उसी से बात करना है कि जिसने, उसी से बात करना है कि जिसने हमें समझा नहीं पूछा बहुत है, हमें समझा नहीं पूछा बहुत है। और एक ये शेर आखिरी शेर है कि हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है, हमारा रास्ता सीधा बहुत है।
1: बहुत खूब।

0: हमारे साथ हैं अभय फगरे। आप ख्यात बांसुरी वादक, जिनकी बांसुरी की मधुर तान आपने कईयों बार आकाशवाणी से सुनी होगी। स्वागत है अभय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। आप आकाशवाणी को लेकर क्या महसूस करते हैं, या वो क्या अनुभव है आपका जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं?
1: नमस्कार मिता जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी के सारे परिवार को बधाइयां देता हूँ कि 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के और आप इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ तक आकाशवाणी का मेरे दिल में या मेरे कार्य में योगदान है और मेरा इसके अंदर योगदान है, इसके अंदर तो बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, पर बहरहाल संक्षेप में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
0: स्वागत।
1: और आकाशवाणी का मैं शायद संगीतकार के रूप में, हम लोगों की जनरेशन लगभग मतलब जो स्टाफ आर्टिस्ट भी रहे हैं तो उन लोगों की लगभग अंतिम जनरेशन है हम लोगों की
0: जी।
1: और हम लोगों ने जितना हमारे जीवन में आकाशवाणी का क्या इतना अद्भुत महत्व है कि हम बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आकाशवाणी ने जैसे हम लोगों को संगीत के लिए प्रेरित किया है और संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इतना अधिक संगीत और खासकर शास्त्रीय संगीत जिसे हम राग संगीत कहते हैं, ये हमने रेडियो से आकाशवाणी के माध्यम से ही हमें सब समझ में आया है। और ये हमारी मेरा सौभाग्य है कि मैं अंततः आकाशवाणी कलाकार के रूप में अपने सेवाएं आकाशवाणी को दे पाया और वहीं से फिर मैं अंततः रिटायर हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे संगीत जगत में और संस्कृति में अगर हम और बृहत रूप से देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को सहेजने के माध्यम के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
0: जी। आप आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी आपने सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। यदि इससे अलहदा बात की जाए तो पूरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर या उसके कल्चर को लेकर या उसकी किसी विशेषता को लेकर आप कौन सी बात ऐसी महसूस करते हैं जिससे आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, जुड़ना चाहते हैं या आज भी अपनापन महसूस करते हैं?
1: सबसे बड़ी बात तो है कि इसका धरातल पूरा का पूरा भारतीय है
0: जी।
1: मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने आइडियाज कहीं से बाहर से बारो नहीं करते थे। यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू में भारतीयता सबसे ज्यादा झलकती थी, ये मुझे हमेशा लगा है। और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता था, जैसे कि हमारे उत्सवों के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनते थे पहले, और वो उत्सव मतलब पूरे साल भर में जितने भी उत्सव होते थे उनके प्रोडक्शंस हुआ करते थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में रेडियो पे होते थे, वो उसका कोई पैरेलल नहीं था।
0: भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और जो हमारे जीने का आधार है वो यदि हमें कहीं से मिलता रहता है तो बहुत सीधी सी बात है कि उसका आकर्षण, उसका लगाव या उसकी आत्मीयता हमें बांध कर रखती है।

आज एक उत्सव की तरह हम आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप एक ख्यात बांसुरी वादक रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना आपकी बात का

0: समापन और इस कार्यक्रम का समापन एक उस छोटी सी बांसुरी की धुन से किया जाए जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होते हैं कार्यक्रम का समापन कर सकें।
1: जरूर जरूर।

बांसुरी की मधुर तान माहौल में रस घोल रही है। उत्सव की बेला अपने उत्कर्ष पर है। उत्सव जो 9 दशकों की यात्रा की निरंतरता का है। उत्सव है हमारे आपके भरोसे का, हमारे आपके साथ का, प्रीत की डोर से बंधे हमारे सपनों, उम्मीदों और प्रेम का, आने वाले समय और रोशनी का, जिसकी उजास दे रही है ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद आपको, हमको।

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधीर श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। प्रस्तुति थी अमिता त्रिवेदी की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत झुक गया आसमां। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

रोजा फिल्म के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना सुन लीजिएगा। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित एवं स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदन ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopeyear@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: रीमा 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी है। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्टून हम आपको सुना रहे हैं जंगल की तलवार का भाग तीन।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियल वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वे।

शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी बसुमती के सामने लोक निंदा के भय से आत्महत्या करने की बात कहती है। बसुमती उसे गर्भवती होने की बात छिपाकर शिबू के साथ गौना करने का सुझाव देती है। शिबू गौना कराकर नारायणी को अपने घर ले आता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं। यूनियन की आम सभा में यशवंत को यूनियन का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ब्राह्मण महाराज की मौत हो जाती है तो शिबू बेकार हो जाता है। बसुमती शिबू के घर आती है और 50 मजदूरों को साई नदी की साइड पर चल रहे काम पर ट्रांसफर करने की बात बताती है। उसी समय नारायणी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बसुमती नारायणी की गर्भवती होने की खबर सुनाती है तो शिबू बहुत खुश होता है। साई नदी की साइड पर आने के बाद शिबू की लिचू से मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक बलबीर स्वामी यशवंत से मिलता है और मजदूर हड़ताल की सूचना देता है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है।

0: बहुत दर्द हो रहा है।
1: नारायणी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
0: मुझे लगता है प्रसव का समय आ गया।
1: क्या करूं, अरे किसके पास जाऊंगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
0: सुनो जी, तुम जल्दी से जाकर काकी को बुला लो।
1: मैं जाता हूँ काकी को बुलाने, तुम चिंता मत करना, मैं अभी काकी को बुला कर आता हूँ।
0: क्या करूं, क्या करूं, मैं पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है।
2: चिंता न करना रानी, हम आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं बेटी,
0: काकी मेरी जान निकलती जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है काकी।
2: बस क्या बात, काकी पीड़ा सही
1: नारायण सिंह।
2: अरे तू क्या कर रहा है, चल जा, जा।
1: अच्छा अच्छा काकी,
2: बस नारायण, बस बस बस बस बस बस प्रसव होने वाला है, तू चिंता न कर। माँ बिन के वासिनी का नाम तेरा सब कष्ट है।
0: ये क्या हुआ, बच्चा तो पैदा होते ही मर गया, और नारायणी, नारायणी को भी होश नहीं है। क्या करें हम भगवान, क्या करें हम, ये पानी का छींटा इसके मुंह पर डालते हैं, होश आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। नारायणी, नारायणी, नारायणी, मेरे बच्चे,
3: मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कैसा है काकी, बोलो ना काकी, मेरा बच्चा कैसा है?
0: छाती पर पत्थर रख ले नारायणी, छाती पर पत्थर रख ले।
3: क्यों,
0: मेरा लड़का पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया।
1: ना बिटिया ना, बिटिया ना,
0: जो भगवान को मंजूर है वो ये होता है।
2: नारायणी,
0: शरीर को तो कितना कमजोर है ना बेटी, ना भी बेटा,
3: आप ठीक कहती

0: एकाकी, मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
1: हाँ बेटी,
0: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
1: बेटी तो
0: भगवान ने विंध्यवासिनी ने मुझे इस पाप की बोझ से मुक्त कर दिया। लेकिन काकी, मैं क्या करूं? मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है, उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रखना रानी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करे।

0: काकी काकी क्या हुआ काकी? नारायण तो ठीक है ना?
1: हाँ बेटा, नारायण तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
0: क्या हुआ?
1: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
0: क्या बोलो जो? क्या बोलो?
1: हाँ बेटा,
0: नारायण
1: होनी बड़ी बलवान है बेटा, होनी बड़ी बलवान है।
0: अरे नहीं, काकी।

0: नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? अभी दो दिन पहले तो नहीं नारायणी, नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे ये तो कितनी कमजोर है, अभी मजूरी नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी नहीं, देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में इनका एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे कानपुर जाना ही होगा।
0: नारायणी नारायणी, भगवान, हम गरीबों के भाग्य में दुखों का अंबार लगा हुआ है। अरे मुझसे बड़ी बदकिस्मत भला इस संसार में और कौन होगा? अरे मैं हत्या करता जवान जवान मर बेकार पड़ा हूं, और मेरी एक पसली की कमजोर पत्नी वो मजूरी करने गई है। भगवान भगवान, मैं क्या करूं? संतान का मुख देखने के लिए कितनी उतावली थी मेरी नारायणी, मगर भगवान तूने मेरी सभ्या से बहुत वो सुख भी छीन लिया। क्यों चीरा तूने उससे वो सुख? भगवान, अरे तेरी इच्छा के चलते ही अपनी संतान को साई में बहा देना पड़ा मुझे। अगर उसे कुछ हो गया ना, अगर उसे कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भगवान। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भगवान, उसे कुछ नहीं
2: होगा। शंभू काका,
3: तू आ गया यशवंत।
2: अरे आपका बुलावा सुनकर नंगे पैर दौड़ा आया हूँ, कोई विशेष काम है मुझसे काका?
3: अरे पहले बैठ तो सही।
2: अब कहो शंभू काका, किस प्रयोजन से बुलाया है तुमने मुझे?
3: देखो बेटा, मैंने मनौती मांगी थी कि दलित समाज से यूनियन का प्रतिनिधि बनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करूंगा।
2: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है काका, बताइए कब करना है कथा पूजा का आयोजन?
3: परसों बेटा।
2: पंडित जी को कथा बांचने का निमंत्रण दिया कि नहीं?
3: गया था लेकिन निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
2: क्यों काका?

0: अरे हम दलित जो हैं, पहले तो आने के लिए बमहनाई की दुहाई देकर आने से मना करता रहा। हाथ पैर जोड़ने पर किसी तरह माना तो मुंह फाड़ कर दक्षिणा की मांग कर बैठा अनवस्त्र अलग से।
1: काका तो फिर पूजा कैसे होगी?
0: क्यों, क्या तू पढ़ा लिखा नहीं है?
1: अरे सो तो ठीक है काका, लेकिन ये मंत्र वंत्र मुझे कहाँ आता है?
0: क्या पंडित माँ के पेट से मंत्र सीख कर आता है?
1: नहीं तो।
0: अरे पंडित भी कथा की पुस्तकें पढ़कर ही मंत्र बांचता है, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता?
1: मैं समझ गया काका, सब समझ गया। आप कथा के आयोजन की तैयारियां कीजिए। और हाँ काका, दलित मजदूरों के अलावा दूसरे मजदूरों और कंपनी के अफसरों को भी कथा में आने का न्योता दिया ना।
0: ये पागलों वाली बात ना कर यशवंत, हम दलितों की लाइन में भला कौन आएगा, हम छोटी जात जो ठहरे।
1: अरे सुनो काका, दूसरे लोग भले ही हमें ईश्वर के सामने समान नहीं मानते हो, मगर हमारी नजर में सब समान है। हम सभी के बीच इंसानियत का रिश्ता जो है काका, और फिर न्योता देना तो हमारा कर्तव्य है, आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा।
0: ठीक है यशवंत बेटा, मैं सभी को न्योता दे आऊंगा।
1: हाँ ठीक है, हुई ना बात काका।
2: सुन भाई बामू।
3: बोल रहा हूँ।
2: अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चील गिद्धों का आहार बनकर रह जाएंगे।
3: क्यों भाई रामू, क्यों?
2: देख बामू, जब हम चारे खेरा पर थे तो ठाकुर साहब की चापलूसी करके उनका विश्वास जीत लिया था। उसके बाद हमने वहाँ खूब चोरियाँ की, मगर भला हो ठाकुर साहब का, हम कभी पकड़े नहीं गए।
3: बिल्कुल ठीक कहता है रामू, यहाँ तो काम करना पड़ता है तब जाकर हमारा पेट भरता है।
2: और भैया बामू, काम करना हमारे बस का रोग है नहीं।
3: हाँ।
2: काम किए बिना हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब क्या हमारी लाश को चील और गिद्ध नोच नोच कर नहीं खाएंगे?
3: अरे नहीं रामू भाई नहीं, अरे तेरी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता भाई, कुछ सोच सोच भैया।
2: अरे सोच तो कर पहले, मुझे कुछ सोचने दे।
3: सोच ना। तूने कुछ देखा?
2: हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक जीप आकर रुकी है।
3: हाँ, पर रामू भाई, ये जीप में कौन आया होगा?
2: बाबू वो देख, जीप से कोई उतर रहा है।
3: हाँ, अरे वो तो अपने ठाकुर साहब है। रामू, पर कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
2: अरे सपना नहीं बामू, ये सचमुच के ठाकुर साहब है।
3: अच्छा।
2: अरे अपने चारे घेरा वाले ठाकुर साहब।
3: अरे तो फिर जल्दी कर, ठाकुर साहब के कदमों में गिर जाओ।
2: चल बाबू, चल।
3: पाए लागू ठाकुर साहब।
4: अरे रामू बामू, तुम दोनों?
2: ठाकुर साहब, हमने तो आपको देखते ही पहचान लिया।
3: अब देखो ना ठाकुर साहब, आपके बिना हमारी क्या हालत हो गई, सूख कर टाटा हो गए।
2: सरकार आप यहीं पर रहने आए हैं ना?
3: अबे चुप। अरे खुद ही बोले जाएगा या ठाकुर साहब को भी कुछ बोलने देगा? हमें आशीर्वाद लेने देगा या नहीं? ठाकुर साहब ये तो नादान है
2: मालिक।
3: आप बताइए, ये चारे खेड़ा से यहाँ कैसे आना हुआ?
2: सर
4: मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, चार्ज लेने आया हूँ।
2: कितना दे तूने, कितनी जल्दी हमारी। जब ठाकुर साहब यहाँ आ गए हैं तो हमारे दुखों का अंत समझो।
3: ठाकुर साहब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
4: अभी तो मैं 3-4 दिन व्यस्त हूँ। हाँ, इतवार को मेरे घर आ जाना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
3: ठाकुर साहब जी,
5: पूजा संपन्न हुई, आरती का समय हो गया है, सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, भगवान सत्यनारायण की आरती गाएं।
6: बोलो स्वामी

0: सत्यनारायण भगवान की
1: जय।
0: बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की
1: जय।
2: शंभू काका, अब आप सभी भक्तों में चरणामृत और प्रसाद का वितरण कर दीजिए।
3: ठीक है, लो भाई लो, चरणामृत लो, प्रसाद लो, लो लो, तुम भी लो।
4: चरणामृत

0: एसपी साहब, आप मुझे बुलवा लिया होता। आइए आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए।
1: देखो ठाकुर, अगर तुम्हें बुलाने से काम निकल सकता तो मैं ऐसा ही करता। अगर ऐसा नहीं किया तो इसीलिए कि यहाँ आए बिना मेरा मकसद हल हो ही नहीं सकता था।
0: ठीक है सरकार, तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
1: ठाकुर, जानते हो मेरी पोस्टिंग विजिलेंस ब्रांच में है।
0: जी, क्या विजिलेंस ब्रांच?
1: हाँ,
0: लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर विजिलेंस वालों को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: एक बात बताओ ठाकुर।
0: कहीं सरकार,
1: जिस समय साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखाई गई थी, उस समय मंत्री जी के लिए आप लोगों ने एक मंच बनवाया था।
0: देखिए एसपी साहब, यहाँ पर मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, फिर भी दूसरे अफसरों से पता चला है कि मंत्री जी के लिए यहाँ पर एक मंच बनवाया गया था।
1: इस मंच को बनवाने में कितना समय लगा था?
0: सर, वो इस सवाल का जवाब तो मैं स्टोर कीपर से ही पूछकर दे सकता हूँ।
1: ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सीमेंट का खर्चा किसने दिया था? कंपनी ने या सरकार ने?
0: मेरे ख्याल से सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी काम हमारे मजदूरों ने किया था।
1: तो ये खर्च का हिसाब किताब कहाँ है?
0: वो स्टोरकीपर के पास।
1: स्टोरकीपर के पास, ठीक है, हिसाब किताब की फाइल मंगवाइए।
0: फाइल? आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं फाइल लेकर खुद आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा।
1: हाँ, ताकि तुम फाइल में मन माफी फिर बदल कर सको।
0: नहीं नहीं एसपी साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
1: हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ठाकुर, अभी इसी समय फाइल मंगवाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा।
0: आप नाराज मत होइए सरकार, मैं अभी मंगवाता हूँ।
2: रामू बाबू, अरे ओ रामू बाबू, कहाँ मर गए दोनों? रामू बाबू,
0: रामू तू एसपी साहब के लिए जाकर चाय लेकर।
3: बिल्कुल सरकार।
0: बाबू
3: जी सरकार,
0: तू स्टोर कीपर से सन 1974 की फाइल मांग कर ला।
3: 1974?
0: एसपी साहब, ये फाइल 4 साल पहले की है, तब मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। देखिए,

0: नहीं, नारायणी को क्या हुआ है? वो लीजू है ना, वो कह रहा था कि नारायणी की तबीयत ठीक नहीं है।
1: हमने तो भेजा था उसे।
0: नारायणी है कहाँ काकी?
1: सो रही है।
0: सो रही है? काकी वो ठीक तो है ना?
1: हाँ ठीक है नारायणी, ठीक है।
0: काकी वो लीजू, काकी तुमने लीजू से ऐसा क्यों करवाया?
1: अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली शिबू। हाँ भगवान ने तेरी सुन ली। नारायणी का पैर भारी है।
0: अरे काकी काकी काकी।
2: मजदूर भाइयों, यूनियन के नेताओं ने कंपनी के अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन कंपनी हमारी मांगों पर गौर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब हमारे पास अंतिम हथियार सिर्फ एक ही है, और वो है हड़ताल।
3: सुनिए, हमारे मजदूर भाई जानना चाहते हैं कि कंपनी के साथ यूनियन की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है।
2: बहुत अच्छा सवाल किया यशवंत तुमने। यूनियन कंपनी के साथ 1975 में हुआ समझौता रद्द करवाना चाहती है।
0: लेकिन यूनियन ऐसा क्यों चाहती है?
2: क्योंकि ये समझौता मजदूर विरोधी है।
3: और मैंने सुना है कि ये समझौता भी यूनियन ने ही किया था।
2: ठीक सुना है तुमने। दरअसल तब के यूनियन नेताओं को कंपनी ने खरीद लिया था। जब इस बात का पता चला तो पुराने नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया, यूनियन में नए नेताओं को रखा गया। हम 1976 से ही इस समझौते को रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल के बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पानी अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब हड़ताल होगी, आर पार की लड़ाई होगी।
1: ना ना नहीं नहीं, अरे हम हड़ताल नहीं करेंगे।
0: अरे काकी ये तो क्या कह रही है?
1: हम ठीक कह रहे हैं, हड़ताल से हिंसा होती है। अरे गांधी भगवान अहिंसा के पुजारी रहे ना, हा? तो हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए।
0: अरे चुप रहो बुढ़िया तू।
3: बिल्कुल गलत बात कर रहे हो बलवीर बाबू। तुमने काकी को बुढ़िया कहा? अरे बसुमती काकी हम सबकी माँ की उम्र से भी बड़ी है, कम से कम उनसे तो तुम्हें तमीज से बोलना चाहिए। जो मजदूर भाइयों, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
4: नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा।
5: हम किसी मजदूर का अपमान सहन नहीं करेंगे।
2: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये सभा आप लोगों के हित के लिए बुलाई गई है, हड़ताल आप लोगों के हित में होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी यूनियन का साथ दें, यूनियन का विरोध न करें, और जोर से नारा लगाएं हमारे साथ, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूरों पर अत्याचार
6: बंद करो, बंद करो।
2: मजदूर भाइयों, हड़ताल करने के लिए हमें किसानों का भी सहयोग लेना चाहिए, वो भी हमारी ही तरह मजदूर हैं। अगर मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
3: किसान मजदूर एकता,
6: जिंदाबाद जिंदाबाद।
3: किसान मजदूर एकता,
6: जिंदाबाद जिंदाबाद।
7: चल भाई बामू, चुपचाप यहाँ से खिसक ले। अरे अब हमारा यहाँ क्या काम?
8: भाई तू ठीक कहता है रामू, ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम हड़ताल की खबर सुनाएंगे तो वो हमें अंग्रेजी शराब पीने को देंगे।
7: अरे तो जल्दी चल, मेरी तो अभी सलार टपक रही।

0: तो मजदूर भाइयों, हमारी अगली सभा आप खेत में होगी, वहाँ पर लोकल लीडर शास्त्री जी भी आएंगे। आज की सभा संपन्न होती है, सब लोग अपने अपने घर लौट जाए। मजदूर एकता, मजदूर एकता।
1: हड़ताल करने चले हैं? अरे जब भूखा मरने की नौबत आएगी ना, तब पता चलेगा। कर लो हड़ताल।

0: खुशियां बनाओ रे खुशियां बनाओ।
1: काकी काकी ये तो बता क्या हुआ, लड़का या लड़की?
0: अरे छात्र राम पधारे तुम्हारे घर।
1: अरे वाह सच काकी। लो लो काकी ये लो, अरे गांव में ये सिर्फ 5 का नोट है, रख लो रख लो। मैं सभी लोगों को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे वाह वाह।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना जंग लगी तलवार का भाग 3। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के हित में एनडीए सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विकासखंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन से नहीं 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विकासखंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन

आज एंड्रॉइड और आईफोन जैसे स्मार्टफोन पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। भारत में भी मोबाइल क्रांति तेजी से बढ़ी है। आज गांव तक इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। मोबाइल की सकारात्मक प्रभाव। मोबाइल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने संचार को अत्यंत सरल बना दिया है। पहले किसी व्यक्ति से संपर्क करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब कुछ ही सेकंड में बातचीत संभव है। लाभ, दूर बैठे परिजनों से संपर्क, वीडियो कॉल की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में सहायता, व्यवसायिक संचार में तेजी। मोबाइल ने व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में संचार को मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव। मोबाइल ने शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। आज विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा में मोबाइल का उपयोग, ऑनलाइन कक्षाएं, ई बुक, शैक्षणिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भाषा सीखना। कोविड-19 महामारी के समय मोबाइल शिक्षा का मुख्य साधन बन गया था। सकारात्मक परिणाम, घर बैठे शिक्षा, समय की बचत, डिजिटल ज्ञान में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सुधार, व्यापार और रोजगार में सहायता। मोबाइल ने व्यापारिक गतिविधियों को आसान बना दिया है। व्यापार में उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, ग्राहकों से संपर्क, ऑनलाइन मार्केटिंग। आज लोग मोबाइल के माध्यम से घर बैठे व्यवसाय चला रहे हैं। मनोरंजन का साधन, मोबाइल मनोरंजन का भी बड़ा साधन है। मनोरंजन के माध्यम गाने सुनना, फिल्में देखना, गेम खेलना, सोशल मीडिया, वीडियो बनाना, इससे लोगों को तनाव कम करने में सहायता मिलती है। आपातकालीन सेवाओं में उपयोग, मोबाइल आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण, दुर्घटना होने पर सहायता बुलाना, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सहायता, प्राकृतिक आपदा की सूचना, इससे कई लोगों की जान बचाई जाती है, जा सकती है। सामाजिक जागरूकता, मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग समाज और देश दुनिया की खबरों से जुड़ रहते हैं। समाचार प्राप्त करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी, जागरूकता अभियान, डिजिटल इंडिया में योगदान। भारत सरकार की डिजिटल योजनाओं में मोबाइल की बड़ी भूमिका है। उदाहरण, UPI भुगतान, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन। मोबाइल ने प्रशासन को पारदर्शी और तेज बनाया है। मोबाइल के दुष्प्रभाव, मोबाइल के अनेक लाभ होने के बावजूद इसके दुष्प्रभाव भी गंभीर हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आँखों पर प्रभाव, लगातार स्क्रीन देखने से आँखों में दर्द, जलन, कमजोरी होना, गर्दन और पीठ दर्द। लंबे समय तक झुककर मोबाइल चलाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नींद की समस्या, रात में मोबाइल उपयोग से नींद प्रभावित होती है। मानसिक तनाव, सोशल मीडिया पर गेमिंग की लत तनाव और चिंता बढ़ाती है। बच्चों में मोबाइल की लत तेजी से बढ़ रही है। दुष्प्रभाव, पढ़ाई में ध्यान कम, खेलकूद में कमी, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, सामाजिक दूरी, मानसिक विकास पर प्रभाव। आज कई बच्चे वास्तविक दुनिया से अधिक अभ्यासी दुनिया में जीने लगे हैं। समय की बर्बादी, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग समय नष्ट कराता है। उदाहरण, घंटों सोशल मीडिया चलाना, बेकार वीडियो देखना, गेम खेलना, इससे उत्पादकता कम हो जाती है। सामाजिक संबंधों में दूरी, मोबाइल ने लोगों को आभासी रूप से जोड़ दिया है, लेकिन वास्तविक संबंध कमजोर हो रहे हैं। प्रभाव, परिवार में बातचीत कम, अकेलापन, रिश्तों में दूरी। आज लोग एक ही घर में रहते हुए मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। साइबर अपराध, मोबाइल और इंटरनेट के कारण साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध के प्रकार, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फर्जी कॉल, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव, मोबाइल विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी है। समस्याएं, ध्यान भटकाना, सोशल मीडिया की लत, परीक्षा परिणाम खराब होना। कई विद्यार्थी पढ़ाई की बजाय मोबाइल में अधिक समय बिताते हैं। दुर्घटना में वृद्धि, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाना दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकता है। उदाहरण, ड्राइविंग करते समय कॉल, सड़क पार करते समय मोबाइल देखना, इससे जान को खतरा बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, मोबाइल और सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। समस्याएं, अवसाद, चिंता, अकेलापन, आत्मविश्वास में कमी। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने से मानसिक तनाव बढ़ता है। विद्यार्थी पर मोबाइल का प्रभाव, विद्यार्थियों के जीवन में मोबाइल का विशेष महत्व है। सकारात्मक प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा, नोट्स और सामग्री, ज्ञान में वृद्धि, नई तकनीकी सीखना। नकारात्मक प्रभाव, गेमिंग की लत, ध्यान की कमी, अनुसहनशीलता, परीक्षा में खराब प्रदर्शन। इसलिए विद्यार्थी को सीमित और उपयोगी मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। समाज पर मोबाइल का प्रभाव, मोबाइल ने समाज को आधुनिक बनाया है। सकारात्मक प्रभाव।

0: सूचना क्रांति, डिजिटल सेवाएं, सामाजिक जागरूकता और रोजगार के अवसर, नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक अलगाव, अफवाहों का प्रसार, फेक न्यूज, अपराध में वृद्धि, ग्रामीण जीवन पर मोबाइल का प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ने बड़ा परिवर्तन लाया है। लाभ, किसानों को मौसम की जानकारी, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की सूचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। चुनौतियां, डिजिटल ज्ञान की कमी, इंटरनेट का गलत उपयोग, महिलाओं के लिए मोबाइल का महत्व, मोबाइल महिलाओं सशक्तिकरण में सहायक है। लाभ, सुरक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता। लेकिन साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी बड़ी हैं। मोबाइल आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसने संचार, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और प्रशासन को नई दिशा दी है। मोबाइल ने जीवन को सुविधाजनक और तेज बनाया है। इसके माध्यम से दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है। लेकिन मोबाइल का अत्यधिक उपयोग और गलत उपयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव, समय की बर्बादी, सामाजिक दूरी, मानसिक तनाव और साइबर अपराध जैसी समस्याएं समाज के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मोबाइल का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करें। यदि मोबाइल का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मानव विकास का शक्तिशाली साधन बन सकता है, लेकिन यदि दुरुपयोग किया जाए तो यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः हमें मोबाइल को अपना सेवक बनाना चाहिए, स्वामी नहीं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, युवाओं में मोबाइल की लत, समस्या और समाधान, जिसके वार्ताकार थे पवन पटेल। तो आस्था, आज है सोमवार और हम सब जानते हैं कि हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके का।
2: और साथियों, आज है अंक 123 और संस्कृति, हमने अंक 123 के लिए अपने दोस्तों से 10 सवाल पूछे थे और ये सवाल हमने पूछे थे पिछले सोमवार को, जिसमें हमारे साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
1: तो आस्था, हमें ईमेल के माध्यम से श्रोताओं के पत्र प्राप्त हुए हैं और इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अंक 123 के प्रश्न और उनके सही सही उत्तर। साथियों, हमारा पहला प्रश्न था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था?
2: इसका सही उत्तर है कर्नाटक ने।
1: साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य ने शुरू की है?
2: इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने।
1: साथियों, हमारा तीसरा सवाल था, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया?
2: इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में।
1: हमारा चौथा सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है?
2: इसका सही उत्तर है मुंबई।
1: हमारा पांचवा सवाल था, बीएम फ्रेम्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?
2: इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
1: हमारा छठवां प्रश्न था, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी?
2: इसका सही उत्तर है लीसा गिल।
1: हमारा सातवां सवाल था, हाल ही में किस राज्य में हिरोशिमा युग के जीवाश्म का एक भंडार खोजा गया है?
2: इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में।
1: हमारा आठवां प्रश्न था, किस टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता?
2: इसका सही उत्तर है आरसीबी ने।
1: हमारा नवा प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य घोषित होने वाला राज्य कौन सा है?
2: इसका सही उत्तर है सिक्किम।
1: हमारा दसवां सवाल था, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है?
2: इसका सही उत्तर है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
1: तो साथियों, ये तो थे हमारे सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 123 के प्रश्न और उनके सही सही उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर हमारे साथियों ने हमें ईमेल के माध्यम से भेजे हैं। तो साथियों, तो आस्था, 10 में से 6 सही तक के एक भी पत्र हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। हमें कुछ ऐसे पत्र मिले हैं जिन साथियों ने 10 में से 7 सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमारे वे साथी हैं,
2: बंगला मटिया बालोद छत्तीसगढ़ से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रेम्बिका लीना और आशुतोष अंगारे।
1: साथियों, हमारे कुछ ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने 10 में से 8 सवालों के सही जवाब दिए हैं। हमारे वे श्रोता हैं, नवागढ़ कटई जिला बेमित्रा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा।
2: अगला पत्र में प्राप्त हुआ है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है ग्राम बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, यश प्रयाण, बंटी और बबली वर्मा का।
2: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है दरियापुर बावली महाराष्ट्र

0: से गजानन एले और नवदीप एले का।
1: साथियों, अब हमारे कुछ ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने 10 में से 9 सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमारे वे श्रोता विजेता बनने से केवल एक अंक से पीछे रह गए हैं। हमारे वे श्रोता हैं ग्राम परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी, खुमेंद्र मसिया।
0: अगला पत्र में प्राप्त हुआ है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टरलर कबीर का।
1: तीसरा पत्र हमें प्राप्त हुआ है पथेरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है बोडसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है ग्रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अडारनाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश वर्मा, सार्थक, कपूर सिंह, घोष, पवित्रा और शुभाशु वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम गुढ़ाराज से पेंटर मनोज साहू, चित्रेखा, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू का।
1: साथियों, अगला पत्र हमें मिला है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज, आयुषी गुप्ता।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन और शुमांशु पांडे का।
1: तो साथियों, ये तो थे हमारे वे श्रोता जिन्होंने 10 में से 9 सवालों के सही जवाब दिए हैं। और आस्था, आज हमें एक भी ऐसा पत्र नहीं मिला ना जिसमें 10 में से 10 सही जवाब हों।
0: बिल्कुल, आज हमें एक भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिनके सारे उत्तर सही हों।
1: तो अब हम अपने श्रोताओं को अपनी ही पसंद का गीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को आज निराश नहीं करेंगे, उन्हें हम सुनवाते हैं अपनी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। लेकिन साथियों, याद रखिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि
1: गीत के तुरंत बाद हम आपको बताएंगे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 124 के प्रश्न। तो आप बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म क्या सुपर कूल है हमसे ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्या सुपर कूल है हम से ये गीत, जिसमें आवाज थी सोनू निगम और साथियों की।
1: गीतकार थे कुमार और संगीत से सजाया था मीत ब्रोस अनजान ने।
0: साथियों, उम्मीद है कि आप सभी कॉपी और पेन निकाल कर बैठे होंगे। अब हम आपको बता देते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 24 के 124 के प्रश्न। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था।
1: हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था।
0: हमारा तीसरा प्रश्न है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है।
1: हमारा चौथा प्रश्न है, लेक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है।
0: हमारा पांचवा प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है।
1: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था।
0: हमारा सातवां प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
1: हमारा आठवां प्रश्न है, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था।
0: हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है।
1: हमारा दसवां और अंतिम प्रश्न है, वीजा ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
0: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 124 युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 471001।
1: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है yothchatarpur@gmail.com। इसके लिए हमें आपके पत्र 15 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, जहां आपके कई रोजमर्रा के काम इंसान नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान मशीनें कर रही हों, और वे मशीनें इतनी विकसित हों कि वे सीख सकें, समझ सकें और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय भी ले सकें।
0: यही दिशा आज की तेजी से बढ़ती तकनीक ले रही है, जहां रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर मानव जीवन को एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं।
1: साथियों, वर्तमान समय में ही इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में जटिल ऑपरेशन अब रोबोटिक सिस्टम्स की मदद से अधिक सटीकता से किए जा रहे हैं,
0: जिसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना बहुत कम हो रही है। साथियों, बड़े उद्योगों में मशीन बिना रुके लगातार काम कर रही हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे हम ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की भी विकसित कर रहे हैं।

10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हम

0: है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं।
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है।
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत में

0: चालाक लोमड़ी
1: एक चिरपरिचित लोककथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
2: जी।

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: सारा कौआ अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी। जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
3: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? ओछू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पे तो आया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्लन तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किनिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता।

0: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला
2: हाँ?
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख।

0: वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
1: हाँ हाँ,
0: उठाकर मुझे दे।
1: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
0: हाँ
1: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
0: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग और ये इसकी पूंछ।
1: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
0: अच्छा ले कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: मुझे तो अरे मगर
0: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक है
0: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई
0: हा?
1: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
1: ठीक है
0: चल चल चल चल, चल।
1: हाँ,
0: हम
1: हाँ,
0: दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोचू ने, देखो तो सही पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहा है कोचू और मंगला?
4: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतम भट्टा तिरुपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहना भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ

0: उलचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था, सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी, भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहाँ के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातुरीपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किले मानवर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राज्य की रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से

0: ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा पेरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
0: राजा शाह की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तेरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वे बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में 2 हाथी तक दिए।
3: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत किशोर कुमार, भूपेंद्र और सपन चक्रवर्ती ने गाया है। गुलशन बावरा ने लिखा, आडी बर्मन की।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं बैजनाथ राजपूत से चेतावनी।

0: अभी आपने बैजनाथ राजपूत से ये चेतावनी सुनी।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: अभी आपने बैजनाथ राजपूत के स्वर में ये लोक शैलीबद्ध गीत सुना।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: और लीजिए अब सुनते हैं बैजनाथ राजपूत से कहरवा।

0: अभी आपने सुना कहरवा बैजनाथ राजपूत से।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: अभी आपने विवाह गारी सुनी।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: और लीजिए अब सुनिए बैजनाथ राजपूत से चौकड़िया।

0: अभी आपने चौकड़िया सुनी।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और लीजिए, लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं बैजनाथ राजपूत से कहरवा, ढोलक पर कमलेश कुमार, बेंजो पर संजय वंशकार और झींका पर प्रेम कुमार सोनी ने संगत की है।

बैजनाथ राजपूत के गाए इस गहरवा के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये गुमशुदा हैं महक, इनकी आयु है 16 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, चेहरा लंबा, रंग गेहुआ, आंखें सामान्य बाल काले,

16 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, चेहरा लंबा, रंग गेहुआ, आंखें सामान्य बाल काले। इन्होंने जो पहनती हैं ये कपड़े, उसमें ये काले कलर का नकाब पहनती हैं। दिनांक 9 मई 2026 को ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उरई जनपद जालौन से लापता है। साथ में स्कूल बैग है। यदि किसी को इनके बारे में जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है जावेद मिस्त्री, पुत्र मिस्टर शाह, निवासी उरई, जनपद जालौन। इनके संबंध में सूचित करने के लिए आप चौकी प्रभारी बल्लभ नगर के मोबाइल नंबर 7839002396 पर भी सूचना दे सकते हैं। एक और गुमशुदा के संबंध में आपको सूचना दे दें। इनका नाम है राधा देवी। ये दिनांक 12 मई 2026 को दिन में 3 बजे से ग्राम महेबा, थाना कालपी, जनपद जालौन से लापता है। इनकी आयु है 16 वर्ष, कद है 5 फुट 2 इंच, चेहरा गोल, आंखें सामान्य, रंग गोरा, घने काले बाल हैं। इन्होंने काला लोवर और पेंसिल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। यदि किसी को इनके संबंध में जानकारी मिलती है तो वो कृपया इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पता है कमलेश सिंह, पिता शिव गणेश सिंह, निवासी महेबा, थाना कालपी, जनपद जालौन। मोबाइल नंबर है 9 6 3 2। एक बार फिर हम आपको मोबाइल नंबर बता दें। मोबाइल नंबर है 8009889632। सूचना समाप्त हुई।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
4: अरे रीना, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
7: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा
7: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
8: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो बैंक जाके या

0: हो केवाईसी से, केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ
0: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को नंदनी बहन की राम राम पहुंच जावे। और भैया बहन हो देखो जैसे ही ग्राम सभा को टाइम भाव और हम आ गए अपन से भैया बहनन से मिलवे के लाने। और भैया बहन हो देखो आज है विश्व महासागर दिवस, जो दिवस हर साल 8 जून को मनाओ जात है, जो एक ऐसा पर्व है जो अपन को देखो महासागरन को सम्मान और पृथ्वी पर रहवे योग बनाए रखवे के लाने भूमिका देत है ना। जो दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य जो ही है कि देखो महासागरन के महत्व, उनको मिलवे बारी संसाधन और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के प्रति लोगन को जागरूक करवो है। महासागर अपनी धरती के लगभग 71% भाग को कवर करत है, दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन को उत्पादन भी करत है, जो हम सभी भैया बहनन के लाने जीवन के लाने बहुत ही जरूरी होते हैं, है ना। महासागर मानव जीवन के लाने भोजन को बहुत ही बड़ो स्रोत मानो जात है। कैसे देखो कछु भैया बहन तो समुद्री भोजन पे निर्भर रहते हैं, है ना। ज्यादातर लोग तो देखो महासागर में मछली पालन भी करत हैं, समुद्री यातायात भी करत हैं और पर्यटन भी करत हैं। महासागर में छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने भैया बहन करत हैं, जिसे देखो उनकी रोजी रोटी चल सकत है। और भैया बहन हो देखो अपन ने बा कहावत तो सुनी ही हुई है कि देखो बूंद बूंद से घड़ा भरत है ना। तो अपन खो बचत की आदत डालना है, अपन तनक तनक बचत करके बहुत बचत कर सकते हैं, चाहे देखो पानी की बचत हो, चाहे रुपया पैसा की बचत हो, चाहे बिजली की। अपन से हम बतकाव कर रहे हैं देखो बिजली की बचत को, तो देखो अपन को ऊर्जा को संरक्षण करना है। ऊर्जा की बचत के लाने देखो अपन लाइट और पंखा बंद करके रखे, जब अपन कमरा में ना हुए और कमरा से बाहर हुए तो देखो जितने भी बिजली के उपकरण है उनको बंद करके रखे। एलईडी बल्ब को उपयोग करवें, सूर्य प्लेट को भी उपयोग करवें। प्राकृतिक रोशनी की बात करें अपन तो देखो दिन में जब धूप रहत है तो देखो खिड़की और दरवाजे अपने खोल लेवें तो देखो अपने घर के अंदर उजियारो हो जात है। कछु भैया बहनन की आदत होत के देखो बेफालतू के कूलर पंखा चलत रहा, लाइट जलत रहा, तो देखो अपन खो ऐसो बिल्कुल नहीं करना। जब जरूरत हो तभी देखो अपन लाइट जलावे और जब कूलर पंखा चलावे। ई तरीका से देखो अपन तनक तनक बचत कर रहे हैं तो देखो इसे बचत हो जाए। हम तो देखो सभी भैया बहनन से जय के है के देखो ऊर्जा को संरक्षण अपन खो करने है, एक जनन से नहीं सभी जनन खो करने है। और भैया बहनों देखो बतकाओ तो करते ही रहे, मिलने हैं इब्राहिम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: अपन देखो ज्यादातर खेती पे निर्भर करत है और रहत है। इसे अपने किसान भैया बहन को देखो अधिक आमदनी होवे और ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लाने प्रमाणित बीज को उपयोग करने हैं, जिसे अपने भैया बहन को अधिक आमदनी हो है। कृषि विज्ञान भैया बहन और सरकारी एजेंसियों में जो तैयार भी करो जात है, जो बीज अपन खो सामान्य बीज से 15 से 25% अधिक उपज देत है। प्रमाणित बीज उन्नत किस्म के होते हैं, जी में कोनो प्रकार के कीट और बीमारी नहीं लगाता है। इसे काहे के देखो अपने खेतन में खरपतवार भी कम होते है और देखो निराई गुराई में खर्चा कम होते है। और भैया बहन है देखो अपन से खो बता रहे हैं कि प्रमाणित बीज जब अपन भैया बहन ले तो ई की पहचान भी कैसे करवे अपन। तो प्रमाणित बीजन के जो अपन लेते हैं ऊ के थैला पे ऊ के बैग पे हमेशा नीले रंग को टैग लगो रहत है। ई टैग पे बीज को नाव लिखो रहत और किस्म अंकुरित प्रतिशत शुद्धता की मात्रा और बीज उत्पादन संस्था को पूरा नाव लिखो रहत है। प्रमाणित बीज से उपज भी बढ़त है और अपने भैया बहनों को आमदनी अच्छी होत है। इसे सभी भैया बहनों को प्रमाणित बीज अपने खेतन में बोने हैं और अच्छी किस्म के बीज जरूर बोने हैं, जिसे अपने भैया बहनों को ज्यादा से ज्यादा बार पैदावार और आमदनी होवे। और भैया बहनों देखो मिल रहे हैं इब्राम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जाँच के लिए?
4: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
3: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
5: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
4: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
6: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: भैया बहन है देखो अपन से बात कर रहे थे खेती किसानी को, तो खेती के संगे संगे देखो अपने भैया बहन कछु जने मछली पालन करत हैं, कछु जने पशु पालन भी करत हैं। अपन बात कर है मछली पालन की, तो देखो अपने भैया बहनों के लाने लेके आए हैं हम जा भेंट बायता मछली पालन विषय पे श्री राम रेकवास है बिरजू भैया की बातचीत, तो लो अपने भैया बहन सुने।
7: पंचो, आज अपने स्टूडियो में आए हैं श्री राम रेकवार जी जो मछली पालन करत हैं। तो रेकवार जी राम राम।
8: राम राम सब पंचों को राम राम।
7: रेकवार जी, हम अपन से सबसे पहले तो जो जानबो चाहे कि अपन मछली पालन करत हैं, तो मछली पालन कौन तरीका से अपन करत है इसके बारे में हमारे बहन का बताओ।
8: बिल्कुल सर, सर्वप्रथम तो मछली पालन के लिए अभी अच्छा मौसम चल रहा है, तालाबों की साफ सफाई करना। तालाबों की साफ सफाई और गहरीकरण का अच्छा सुंदर। फिर इसके बाद जैसे ही जुलाई का गंदा पानी आता है उसको देख लें कि बारिश तेज हो रही है, मध्य हो रही। इसके बाद जुलाई के एंड और अगस्त के सेकंड सप्ताह तक बच्चे का छोड़ना जरूरी है, ताकि और विशेष करके उसमें ये देखना कि ओवरफ्लो के लिए जाली लगाना जरूरी है, नहीं तो बच्चा बाढ़ आई और बच्चा बह गया तो किसान को नुकसान है। इसलिए दो चीजें, और बच्चा ज्यों ज्यों बीच बीच में उनकी निगरानी करना है कि ऐसा तो नहीं किसी रोग से ग्रसित हो रहा हो बच्चा, और अच्छी क्वालिटी का बच्चा अपन को डालना, तो उसमें अपन को बीच बीच में कैल्शियम पाउडर चूना और उनके भोजन की व्यवस्था। और अपने इधर सबसे ज्यादा रेहू और कतला की डिमांड रहती है, और इसी बच्चे को रखना और उनका नियमित निगरानी रखना है। और जैसे बड़ा तालाब है बारामासी, तो फिर उनको दो साल पीरियड में रोक के बच्चा निकालना ताकि 5-6 किलो तक वजन हो सकता है। और जैसे छोटे तालाब है कि जुलाई अगस्त से लेके और जनवरी फरवरी तक रहता है तो उनमें अधिकतम 1 किलो तक हो सकता है वजन। बिल्कुल सर। और जैसे करके छोटे किसान भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। और यदि बिक्री की बात है तो फिर उधर छोटे मार्केट में ज्यादा मुनाफा है क्योंकि फुटकर बिक्री

भैया बहनों देखो संदेशन के बाद फैशन स्वागत है अपने कार्यक्रम ग्राम सभा में। और भैया बहनों देखो अपन खेती किसानी से जुड़े हैं और

0: में ज्यादा मुनाफा, और बड़े में क्या होता है कि थोक में उतना मुनाफा नहीं हो पाता है जी है छोटे किसानों को। और बड़े किसानों के लिए तो ऐसा है कि थोक व्यापारी है तो उनकी तो थोक ही में जाना है जी, इनकी मुख्य विशेष के। और तालाब की सफाई विशेष करके करना, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
1: तो तालाब की सफाई कब कब करो चाहिए?
0: तालाब की सफाई का तो अभी हाल जो मानो मई और जून अच्छा मौसम चल रहा है कि पूरी साफ सफाई करके वो कैल्शियम चूना छिड़काव करके कंप्लीट रखें, तब देखें कि कोई कीट पतंग ना हो, तो उस स्थिति में बच्चा को अपन को छोड़ना है।
1: अच्छा
0: हाँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी जरूरी है, दाना पानी हाँ जो मार्केट में आता है, और नहीं तो अपने देसी भाषा में कहते हैं धान का भूसा, उसको डालना तो उसका ग्रोथ भी होता है, वजन भी बढ़ता है और पोषक भी होता है हाँ। और कोई घास भी लगा सकते हैं उसमें, तो घास से भी उसको पोषण मिलता है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, विशेषकर और विशेषकर केकड़े और अन्य ऐसी प्रजाति ना हो जो बच्चों को खा जाए, नहीं तो वो ज्यादा हानि पहुंचाती है अपने लिए।
1: अच्छा
0: हाँ, कुछ मछलियों की प्रजाति है कि छोटे बच्चों को खा जाती है, तो ऐसी प्रजातियों को अलग करके रखना है अपन को।
1: अच्छा अच्छा जी, तो या तो बात हो गई अपनी तैयारी कैसे करें, अब बात आउट है कि इसमें सावधानी कौन कौन सी रखो चाहिए?
0: इसमें विशेष सावधानी के एक तो सावधानी में उसको कीट पतंग देखना जरूरी है, यदि ये आती है कोई व्यवस्था, यदि कीट पतंग या बीमारी लगती है तो उसको कीटाणुनाशक दवा डालें। और दूसरी बात सावधानी में अपने तालाब को ये देखना कि बहाव की ओर ऐसा नहीं कि नाला से निकल जाए, तो वहाँ ये जाला लगा के रखना है जाल, ताकि बह न जाए बच्चा। और तीसरी सावधानी ये है कि उसको बीच बीच में तालाब में निरीक्षण करते रहना है कि बच्चा को कुछ ये केकड़े वगैरह ना खा जाए, या कोई क्या बोलते हैं घास अनावश्यक ना हो उग जाए, ताकि बच्चा नहीं तो निकलने चलने फिरने में घायल हो जाता है। दो चार सावधानी ऐसी हैं कि उनको विशेषकर देख के रहना है। और इसके बाद आता है कि उसको चारों तरफ एक सा माहौल रहे, पानी का ज्यादा चढ़ाव उतार ना हो, अन्यथा नहीं ऊपर चढ़ जाए पानी की धार से ऊपर भी निकल सकती है नीचे की तरह ऊपर भी, तो उनको चारों तरफ से प्रबंध रखना है, ये विशेष सावधानी है।
1: और जैसे जो मछली अपन ने डाली है तालाब में, उनके लाने उचित आहार का क्या सुझाव चाहिए?
0: उचित आहार उन्हें देना है अपने धान का जो बोलते हैं भूसा, धान का भूसे में चावल रहता है छोटा छोटा, तो उसको डालते रहना, तो उसको विशेष आहार उसमें कैल्शियम भी होता है, और एक्स्ट्रा अलग से भी कैल्शियम दे सकते हैं, जैसे चूना पाउडर छिड़क दिया, चूना डाल दिया, और दाना भी डाल सकते हैं, चुनी है, चापर है, मक्का है, ये इसके दाने दरिया बनवा के ये भी डाल सकते हैं उसको।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसको पौष्टिक रहेगा और वजन रहेगा और विटामिन भी रहते हैं इनमें सब में।
1: अब बताऊ कि जो भी अपन ने तालाब में मछलियाँ डाली हैं, तो कौन सी प्रजाति की डाली जाए?
0: प्रजाति उसमें अपने इधर देखा जाए लोकल में तो सबसे ज्यादा रेहू और कतला की डिमांड ज्यादा रहती है।
1: अच्छा,
0: किसानों
1: अच्छा।
0: की और सब लोगों की मार्केट में भी अच्छी डिमांड रहती है दो प्रजाति की, रेहू और कतला की
1: हाँ।
0: और तीसरी आती है अपनी ग्लास कार्ट, एक प्रजाति, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं डिमांड रेहू कतला की, जब सबसे ज्यादा डिमांड रहती है।
1: तो जब कितने दिन में मान लो अब तैयार हो जा
0: जी, मतलब छोटे तालाबों में तो अगस्त से लेके जनवरी तक लगभग 5-6 महीने में 500 से 700 ग्राम तक हो जाती है, और अच्छी देखरेख में 1 किलो तक हो जाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, और एक साल का यदि इसको पीरियड देते तो 5 किलो तक हो सकती है बड़े तालाबों।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उसको चलने फिरने के लिए पर्याप्त लंबाई चाहिए और कम पानी है तो अधिकतम उतनी हो पाती है 500 से 700-800 तक,
1: यानी कुल मिला के 5-6 महीना में माल तैयार हो जाता
0: है। हो जाता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जो अपने छोटे किसान हैं तो उन्हें लगभग कितने एरिया में मछली पालन करो चाहिए कि उन्हें अच्छी आमदनी हो सके?
0: छोटे किसानों को लगभग 2-3 एकड़ की जगह, 4 एकड़ की जगह भी हो तो बराबर आमदनी हो सकती है 5-6 महीने में। उनको जे मानो के 50,000 की लागत में तो जे मानो 8 गुना तक लाभ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सब लागत काट के सिर्फ 8 गुना तक लागत मिल सकती है।
1: चलो, कितनी नौनी और उम्दा बात अपन ने बताई। अंत में हम एक बात और अपन से जानबो चाहे, अपन मछली पालन कर रहे हैं तो मछली पालन के लाने अपन खान शासन की तरफ से कोनो अनुदान लाओ है कि नहीं लाओ है?
0: अभी तक तो मैंने फिलहाल शासन की तरफ से कोई अनुदान नहीं लिया, क्योंकि तालाब छोटे हैं तो छोटे तालाबों में अनुदान उतना नहीं बनता, और दूसरी बात के छोटे तालाब तो 5-6 महीने के तो छोटी लागत है, इसलिए छोटे मुनाफे पे। और बड़े जो सेवा सहकारी समिति है रजिस्टर्ड है तो वो बड़े तालाब में पट्टा ले सकती है, अनुदान ले सकती है, इस सब शासन की व्यवस्थाएं हैं। और SC ST को लगभग 50% है और ओबीसी के लगभग 25 से 30% बेनिफिट मिल सकता है।

0: कितनी नोनी और अहमदाबाद कही है कि जोन भी अपने किसान भैया रहे अगर मछली पालन करने की सोच रहे हैं तो वे शासन की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ भी ले सकते हैं और वे अपनो आमदनी को रास्ता बना सकते हैं। तो रेकवार जी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी नोनी और उमदा जानकारी दी, इसके लाने अपन का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अबे अपने भैया बहन ने देखो कैसी नोनी जा भेंट वार्ता सुनी मछली पालन विषय पे श्री राम रेकवास ने बिरजू भैया की बातचीत। और भैया बहन हो देखो अब अपने भैया बहन को सुनवा रहे हैं रमतुला कार्यक्रम। श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को कार्यक्रम है। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की। तो लो अपने भैया बहन सुने। रमतुला कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन खो नंदनी बहन की राम राम। भैया बहन रो कार्यक्रम शुरू कर है उससे पहले बता दें अपन ई कार्यक्रम के फोन नंबर। पहला नंबर है 241588 और दूसरा नंबर है 2980 29। और भैया बहन देखो छतरपुर को एसटीडी कोड है 076682। तो अपने भैया बहन को इन नंबर पे फोन नंबर लगा के अपनी पसंद को लोकगीत सुनने हैं। रमतुला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक करी जात है। और भैया बहन इको प्रसारण सोमवार के दिना ग्राम सभा में करो जात है। और ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। रमतुला कार्यक्रम में पहला लोकगीत दादरा ब्रजनंदन भोड़ेली व साथियों को गाँव भाव सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
2: हरीश ने कुमार बोल रहे हैं सानोदा से। पहले नंबर का सुनवा देना ब्रजनंदन जी का।
3: तो बोल रहे बम हरी नूरा जिला सागर है। ब्रजनंदन भोड़ेली को लोकगीत सुनवा दे पहले नंबर को।
4: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं दीदी मनोज नामदेव। दीदी आज ब्रजनंदन भोड़ेली जी की आवाज में है लोकगीत सुनना है दीदी।
5: हम पाठक मोहल्ला मोहन कला से बोल रहे हैं परसाम पाठक। आज हमने पहले नंबर को लोकगीत सुनवा दे दीदी ब्रजनंदन भोड़ेली की आवाज।
6: ज्योति शानदार ब्रजनंदन को पहले नंबर को सुना देना।
7: हेलो रमतुला नमस्कार मैं ममता नामदेव बोल रही हूँ ग्राम मऊ बुजुर्ग पोस्ट धामना जिला टीकमगढ़ से। हवाए लाने सुनने मैम ब्रजनंदन भोड़ेली जी का।
8: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल बोल रहा हूँ। पहले नंबर का गीत सुनवा दिए ब्रजनंदन भोड़ेले जी की आवाज़।
9: हम बोल रहे ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देव दीना अहरवार बात कर रहे हैं बहन जी। आज पहले नंबर को सुनवा दो ब्रजनंदन भोड़ेले जी की आवाज़ में।
10: यम मठौरा सरकार धाम के निकट से ग्राम पोस्ट डेयरी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कृष्ण नामदेव बात कर रहे हैं। हमको पहले नंबर का लोग भी सुनना है।
11: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहे हैं। आज पहले नंबर को सुनवा दी ब्रजनंदन भोड़े जी की आवाज में दादरा।
1: और भैया जोई लोग की सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठिया पाती सोई आई है। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है मृतला जिला महोबा से सोनू भास्कर मोनू भास्कर सुषमा दीपका और रश्मि ने। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव मंची शिवम राहुल नरेंद्र दासु छोटू और मिन्नी और इनके सभी परिवार वाले। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है नेपाल पैलेस सागर से तिलकराना मीना राना मोनिका नूपुर रिस्का और रोबिन ने। ग्राम दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक झाबिंद वर्मा ने। तो लो सुनते हैं अपन जो लोकगीत जीखों गा रहे हैं भैया ब्रजनंदन भोड़ेले बा साथी।

0: भैया बहन हो, रमतुला कार्यक्रम में दूसरो हास्य गारी प्रेम नारायण पाठक की गाई भाई सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: चंद्रमान नाम देव बोल रहे, ग्राम पोस्ट देरी जिला छतारपुर। प्रेम नारायण पाठक के आवाज में एक गाड़ी सुनना है।
2: मैं ग्राम गोना कुमार थाना सोलना तहसील जिला माई नाम देव बोल रही। प्रेम नारायण पाठक की आवाज में हास्य गाड़ी।
3: हम बोल रहे हैं ग्राम खड़ीचरा जिला अशोक नगर से आसाराम राजा। प्रेम नारायण पाठक को सुनवा दो।
4: दीदी हम बोल रहे महुआ मोहल्ला हवेली दरवाजा से छुट्टू साहू। दीदी हमें आज दूसरे नंबर का लोग सुनना है प्रेम नारायण पाठक की आवाज में गारी।
5: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। आज हमको प्रेम नारायण पाठक जी का दो नंबर का गीत सुनवा दीजिएगा।
6: मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी। आज हमें प्रेम नारायण पाठक जी की आवाज में लोग सुनना है।
7: जी नमस्कार दीदी, नमस्कार। मैं ग्राम बहेरी के जो है दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ, चित्रकूट धाम के ग्राम बहेरी। प्रेम नारायण पाठक जी की आवाज में गीत सुनते सुनवा दीजिए।
8: ग्राम पनवाड़ी से हम सुनीता बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर का सुना दे प्रेम नारायण पाठक जी की आवाज में।
0: और भैया यही लोगी सुनबे के लाने हमारे पास कछु चिट्ठिया पाती सोई आई हैं। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय बैद, रानी बैद, महिमा बैद, नीतू बैद और उनके सभी परिवार वाले। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर और वंदना गौहर ने। तो लो सुनते हैं अपन इन सभी भैया बहनों की पसंद पे हास्य गारी जीखों गा रहे हैं भैया प्रेम नारायण पाठक जू। तो लो सुनो।

0: रमतुला कार्यक्रम में तीसरो कहरवा ब्रजेंद्र त्रिपाठी को गाँव भाव सुनबे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: हम ग्राम पूछ गोना कुशमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से आपका अपना नियमित छोटा कैलाश नारायण नाम जी बोल रहे जी। आज हमको सुनना है ब्रजेंद्र त्रिपाठी के स्वर में कहरवा लोकगीत है वो सुनना है।
2: ग्राम सुनवास से तहसील महरौनी से नरेंद्र नामदेव बोल रहे ब्रजेंद्र की आवाज में लोकगीत सुनना है
3: जी। मैं ग्राम बिडोरा तहसील सेवड़ा जिलागत से मध्य प्रदेश से लोकन गुर्जर बोल रहा हूँ। दीदी हमको ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी की आवाज में लोकगीत सुनना है।
4: ग्राम पोस्ट बरेसी से बोल रहा हूँ टुंडे अहरवार तीसरे नंबर पर लोकगीत सुनना।
5: जी मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ। नंबर तीन पर ब्रजेंद्र त्रिपाठी के सुर में कहरवा सुना देना।
6: हेलो नमस्ते मैम, हम बोल रहे हैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा बात कर रहे हैं। मैम ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी की आवाज में नंबर तीन को लोकगीत सुन।
7: हम ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरपुर से मंजू नामदेव बात कर रहे हैं। दीदी ब्रजेंद्र त्रिपाठी की आवाज में लोकगीत सुन रहे।
0: और भैया बहनों जो लोकगीत सुनबे के लाने हमारे पास चिट्ठियां सोई आई हैं। बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी सार्थक पवित्रा और उनके सभी परिवार वाले जहाँ चिट्ठियां लिख पहुंचाई है ग्राम मामना महोबा से सोहन सिंह राजपूत ललित और सभी घर वाले ग्राम बन्ने बुजुर्ग पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और उनके सभी परिवार वाले जहाँ चिट्ठियां लिख पहुंचाई है ग्राम पहरा जिला छतरपुर से सुनीता देवी अहरवार कमलेश अहरवार सुनील उत्कर्ष और इनके सभी घर वाले कई लोकगीत सुनबे के लाने जा चिट्ठिया लिखी है ग्राम कनाय और कैतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्य प्रकाश अहरवार ठाकुर दीन रामेत रामरतन रामबाबू रविशंकर लेखराम प्रांशु इनके सभी घर वाले कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम नितिन पलक करण निहारिका और वंश बत्ता ने ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरिविलास सिंह तोमर दीपू अमित अंकित डॉली वर्षा और इनके सभी घर वाले तो लो सुनत है इन सभी भैया बहनन की पसंद पे जो कहरवा जीखों गा रहे भैया ब्रजेंद्र त्रिपाठी जू तो लो अपन सुने।

0: रमतुला कार्यक्रम में कैलाश खरे अलंकार को गाओ श्रृंगार लोगी सुनवे के लाने आए कछु फोन कॉल्स।
1: जी मैं ग्राम व पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना तहसील जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बोल रहे दीदी। आज हम चौथे नंबर पे है कैलाश खरे अलंकार जी की आवाज में एक श्रृंगार लोक रचना है वो वाली लोक रचना सुनवा दीजिए।
2: हम श्री राम रेडियो श्रोता संघ भमौरी कला जिला टीकमगढ़ से है पाठक बोल रहे दीदी। आज आप सुनवा दो कैलाश खरे अलंकार की आवाज में है चौथे नंबर को।
3: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से कैलाश खरे अलंकार जी के स्वर में सुनवा देंगे।
4: तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप बोल रहे कैलाश खरे अलंकार।
5: ग्राम चन्नौरी तहसील पिछोर जिला सीपी से आपका नियमित श्रोता सालक राम बस्कर में बोल रहा हूँ दीदी। आज श्री कैलाश खरे अलंकार जी को गौर लोग भी सुनवा देंगे दीदी।
6: हेलो रमदुल्ला से सिंगाई नदी कबीर आसन से राजीव दास कबीर पंथी बोल रहे कैलाश खरे अलंकार को लोगी सुनना।
0: और भैया जय लोगी सुनवे के लाने हमारे पास चिट्ठियां पाती सोई आई हैं। जय चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट सेंद्री तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी से अनिल कुमार अहरवाज संतोष बतीस दयाल ललती ज्योति शिवानी और शालिनी। जा चिट्ठिया लिखी है नरसिंगर पुरवा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा भवानी देवी नयनदास रिक्की राम ममता देवी भागीरथ इंदु देवी और इनके सभी घर वाले। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है गुना वार्ड नंबर 20 जिला टीकमगढ़ से।

अतादीन यादव, प्रेम नारायण शर्मा, प्रेमी रघुवीर, राम गोपाल यादव, सीताराम, ब्रज किशोर, दीक्षा, उनके सभी परिवार वाले, जवाहरपुरा जिला टीकमगढ़ से घनश्याम दास अहरवा, अंजलि कृष्णा और कीर्ति, रतवास से वीरेंद्र कुमार शुक्ला और गीता शुक्ला ने। तो इन सभी भैया बहनों की पसंद पे अपन सुनत है कैलाश खरे अलंकार को गाओ भाव जो

और भैया बहनों जो तो हतो देखो आज को रमतुला कार्यक्रम और बता दें अगले रमतुला कार्यक्रम की कछु झलकियां। अगले रमतुला कार्यक्रम की पहली झलकी के रूप में अपन सुन है चंद्रभूषण पाठक को गाव भाव जो पर्यावरण लोकगीत सुखी।

0: और भैया बहनों देखो एक संगे आज करम तुला कार्यक्रम पूरा भाव है। आज के ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। अब अपने भैया बहन सुन रहे थे रमतुला कार्यक्रम और भैया बहन है वो बता दें आज की सीख। आज की सीख को विषय है जहाँ खाई दो उतई रह सो। जा एक बुंदेली कहावत है जी को आए थे जहाँ खाओ वहीं पे रहो। यानी अपन को देखो वही पातर में थाली में खात और वही में छेद कर तो जो ऐसा अपन को बिल्कुल नहीं खान करने है। अपन को जोन भैया बहन अपन को सम्मान देते हैं वही के प्रति अपन को वफादार रहने हैं। और अब से हो रही है चलवे की बेरा सो बता दे चलत चलत कल के कार्यक्रम। कल अपने भैया बहन सुन है लोकमन जी कार्यक्रम और वार्ता हुई है डॉक्टर हेमराज द्विवेदी जी से। आज की सीख सुन है आज की सीख में विषय रहे जौन पातर में खात ओई में छेद करत है। तो एक संगे अब सो हो रही है चलवे की बीरा सो अपनी बहन नंदनी को देव आ गया भैया बहन हरो राम राम।
1: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: आकाशवाणी इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एम्पावरिंग फार्मर्स एंड अचीवमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पार्टिसिपेंट्स आर विनोद आनंद मेंबर
3: प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
2: नमस्कार। यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए, जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रूपये पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रूपये मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी, और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही

अपने उद्देश्यों में टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसा आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर तीन कोस पे एक बोली बदल जाती है और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम

0: विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर

0: रहे हैं। फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ

0: होते हैं, इन्होंने पत्रकारिता में तो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही वे यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज वो स्टूडियो है
1: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़े शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल।

0: वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। ये कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हों, कवियों
1: हो, पंत जी, सबने, सबने,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था।

0: के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैट्रिक रिकॉर्ड हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर से बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा।
0: जी कीजिए।
1: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉयस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करेस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर करेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
0: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका

0: सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना। जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और न ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन

0: एन टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहें बताएं। जी आप बताएं।
2: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाले है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
2: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर,
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो, कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उस पर जोर देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कभी पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार है वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
4: और जितने लोग भी कार से सफर
1: करते हैं, 8 बजे शुरुआत होती है वो,
4: तो
1: रेडियो,
4: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल

0: पैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पर अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉ. वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
0: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े

0: हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में

0: शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2000

0: 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉ महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ जेपीएस डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की धन के

0: उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा वो चावल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
1: जी।
0: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना, अच्छी तरह रखना है तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद है, रासायनिक खाद है, इसके साथ में जो जीवाणु खाद है, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
1: जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार
2: जी। नमस्ते मैडम
1: जी,
2: सब्जियों को भी प्रणाम
1: जी।
0: नमस्कार
3: नमस्कार जी।
2: सर जी मेरा कुछ जिज्ञासाएं उत्सुकताएं हैं उत्कंठाएं हैं, मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा दलहन तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है, यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या

0: ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहां पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
1: हो जाती
0: और
1: है।
0: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
2: राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
2: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना,
0: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है, और इसकी कमी बहुत ज्यादा है, और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी है जो किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
3: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
3: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
4: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक उषा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है, और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कम्पोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
5: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में

0: जो दुकान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके दुकान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
1: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में, तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों से कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
2: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
2: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
2: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियां हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो

0: वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है। यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है, मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्सिडी हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उसका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जाए कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट एक गेहूं में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंद नाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी पौध होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजोला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान।

0: जी
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: जी।
1: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
0: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
2: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहां पे एरिया में ले जा सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो वैसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के संस्थान हैं और वहां पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
0: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
3: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
0: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए और धरती कहे पुकार के, ये भी एक
0: जी। राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे
4: जी। जी जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
0: जी डॉक्टर मीना।
2: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकार है वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को पहले हम उसका क्या है ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है।

0: तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ही सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर में आयोजित म्यूजिक कंसर्ट की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज यानी 8 जून 2026 को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्रोताओं, आकाशवाणी ने 9 दशकों की इस प्रेरणादायी यात्रा में देश और विदेशों में अपनी विशेष प्रस्तुतियां श्रोताओं के समक्ष पहुंचाई हैं। आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से देश के जन जन से आत्मीय संबंध स्थापित किए। आकाशवाणी अपनी निरंतर सहभागिता, विश्वास और स्नेह से ही समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्रोताओं, आकाशवाणी विश्वास, संवाद और जनसेवा के 90 गौरवशाली वर्ष आज 8 जून 2026 को पूरे कर रहा है। 8 जून 1936 को आकाशवाणी अस्तित्व में आई और आकाशवाणी ने अपना प्रसारण शुरू किया। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जनसेवा यानी सटीक और विश्वसनीय सूचनाएं, ज्ञानवर्धन और जन जागरूकता से भरी शिक्षाप्रद कार्यक्रम, संस्कार और संस्कृतियों का समागम, संस्कार और संस्कृति का समागम, मनोरंजन से भरे हुए कार्यक्रम और जन जन की आवाज, आकाशवाणी ने अपने समाचारों से आपको ताजा खबरों से हर भाषा में रूबरू करवाया। इन गौरवशाली 90 वर्षों का सफर आप तक लगातार पहुंच रहा है। श्रोताओं, आकाशवाणी छतरपुर आगामी 7 अगस्त को अपने 50 साल पूरे कर रहा है। 7 अगस्त 1976 को आकाशवाणी छतरपुर की स्थापना हुई और आगामी 7 अगस्त 2026 को हम आकाशवाणी का स्वर्ण जयंती समारोह यानी 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी से आप सबको विशेष प्रस्तुतियों से जोड़ रहे हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इस विशेष उपलक्ष्य में आकाशवाणी छतरपुर के सभागार में एक सांस्कृतिक

0: कंसर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेली लोकगीत और सुगम संगीत की बेहतरीन प्रस्तुतियों से श्रोताओं ने अपना मनोरंजन किया और आकाशवाणी की संस्कृति से रूबरू हुए। इस विशेष सांस्कृतिक कंसर्ट में शामिल हुए हमारे आकाशवाणी के लोकगीत कलाकार राम कुमार प्रजापति व साथ ही लोकगीत कलाकार सविता राज और सुगम संगीत में ग्रेडेड कलाकार अटल शुक्ला व साथी और उनके सहयोगी। आप कलाकारों ने श्रोताओं का मनोरंजन किया और आकाशवाणी के गौरवमयी इतिहास को जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए आकाशवाणी छतरपुर के सहायक निदेशक एवं नोडल अधिकारी श्री विनोद कुमार पुष्पद, स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन से हमारे वरिष्ठ समाज सेवी शंकर लाल सोनी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य आभार श्रीवास्तव, आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम प्रमुख रविन्द्र कुमार प्रजापति, आकाशवाणी छतरपुर का संपूर्ण स्टाफ, आकाशवाणी से जुड़े हुए गणमान्य नागरिक और श्रोता बंधु इस विशेष म्यूजिक कंसर्ट में शामिल हुए और सभी ने संगीत का आनंद लिया और जुड़े रहे। म्यूजिक कंसर्ट का शुभारम्भ हमारे अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प और दीप प्रज्वलन कर किया। आइए श्रोताओं, हम आपको जोड़ते हैं बुंदेली की इन परंपराओं से और बुंदेली की सौंधी महक मिट्टी की सुगंध से आप तक पहुंचाते हैं हमारे लोक कलाकारों द्वारा दिए गए इन प्रस्तुतियों को। तदुपरांत बुंदेली लोकगीत की प्रस्तुति देते हुए आप हैं आकाशवाणी छतरपुर और दूरदर्शन के लोकगीत कलाकार राम कुमार प्रजापति व साथी
1: के भजो हरि नाम।

यही आकाशवाणी से जिन्हें गावो शुरू करो टीकमगढ़ की असगरी बाई जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, छतरपुर की उर्मिला पांडे जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और पंडित श्री देशराज जी पटेरिया को तो बहुत तमाम सम्मान मिले। हमारे साथ में हम गुरु जी के साथ थे, राज्यपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश का झांसी में बुंदेलखंड कॉलेज का उद्घाटन करने आए मोतीलाल बोरा, उस समय पटेरिया जी को नहीं पूरी पार्टी को 5-5 किलो का झांसी रानी का घोड़ा देकर सम्मान किया था, हमें भी मिला था उनकी कृपा से। बड़ी अच्छी बात लिखी है, पारंपरिक गीत में इसे जिगरी कहते हैं, जिगरी के पालापन हंस खेले कमायो जवानी रंग रंगोरी, पालापन हंस खेले कमायो जवानी रंग रंगोरी, ओ बा मालिक की खबर भूल गए, बा मालिक की खबर भूल गए, जीने जन्म तयोरी करत रहे मन की चोरी।

जो तेरे था पन उस तो बूंदा ठका लगे छड़ चोरी। हाँ जो तेरे था पन उस तो बूंदा ठका लगे छड़ चोरी। छल तज भजन करो जिन हरि को, छल तज भजन करो जिन हरि को, उनको सब सुधरोरी अबे ना कछु पे गिरोरी। भजो हरि नाम तुम्हारी आ रही कोरी।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: म्यूजिक कंसर्ट में देवी भजन की प्रस्तुति देती हुई आप हैं लोकगीत कलाकार गीता राज।

श्रोतो, आकाशवाणी का इतिहास विस्तृत और व्यापक है। अनगिनत यात्राएं आकाशवाणी ने आप तक पहुंचाई हैं। बात हो मौसम की या बात हो किसानों से जुड़ी, हमारे युवाओं के रोजगार की बात हो या महिलाओं के कामकाज की, हर एक श्रोता वर्ग को जोड़ा है आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने। आकाशवाणी का नेटवर्क देश के कोने कोने में है। न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के आ जाने से दुनिया में कहीं भी हम आकाशवाणी के किसी भी केंद्र से जुड़ सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो आकाशवाणी आज हम सबके साथ है, हम जहां हैं वहां आकाशवाणी है। और संगीत की इसी स्वर लहरियों को हम आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं हमारे अगले कलाकार अटल शुक्ला व साथियों के स्वर में ये बहुत ही मनमोहक भजन हम आपको सुना रहे हैं। कृष्ण प्रभु का भजन है जिसे स्वर दिया है अटल शुक्ला व साथियों ने। आइए आनंद लेते हैं इस संगीत की प्रस्तुति का।

अभी हम आनंद ले रहे थे अटल शुक्ला व साथियों के गाए हुए इस सुगम भजन का। श्रोताओं, आकाशवाणी @90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल पूरे हो रहे हैं इस उपलक्ष्य में इस म्यूजिक कंसर्ट में हम विशेष प्रस्तुतियां अब तक लेकर आए हैं आकाशवाणी @90 के अंतर्गत। लीजिए अब सुनिए सविता राज के स्वर में बुंदेली की यात्रा के संबंध में इस प्रस्तुति के माध्यम से और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी @90 के अंतर्गत। आइए सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति सविता राज और साथियों के स्वर में।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: इस अवसर पर देवी गीत की प्रस्तुति देती हुई आप हैं लोक कलाकार गीता राज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से संगीत की ये सुरमई यात्रा, बुंदेली और सुगम लोक संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एक आल्हा की प्रस्तुति राम कुमार प्रजापति व साथियों के स्वर में।

चल दाओ बांधी है महलों से, चल दाओ बांधी है महलों से, अगम कम को ध्यान लगाए, लगी कचहरी जा आला की, बांधी झुकी सामने जाए, और नजर गूंज गई, नजर घूम गई है उदल की, फिर बांधी को देखा जाए, बोले उदल है बांधी से, मैं बांधी की ले बलाए, किस कारण से तुम आई हो, सो तुम हाल दे बतलाए।

से आज बना फरराए, तुम्हें बुलाया है मछला ने जिसका नाम मलंदूराय।

शोली मलना है उदल से, अरे उदल सुन लो ध्यान लगाए। चंद्रा बल ब्याई भौरी गए, अब तक महवे आई नाय। चंद्रा बल ब्याई महवे तक, अब तक महवे आई नाय। चंद्रा बल ब्याई भौरी गए, अब तक महवे

बोला उदल है मछला से, मछला सुन लो कान लगाए। मैं जाता हूँ भौरीगढ़ को और बहना को ल्याऊं लवाए। कौन सूरमा भौरीगढ़ में जो उदल को काटे बार, कौन सूरमा भौरीगढ़ में जो उदल को काटे बार।

चल महवे से चल दल हे महवे से भौरी गढ़ को ध्यान लगाए जहाँ कचोरी भौरी गढ़ की उदल झुका सामने जा।

के साथ धोखा करो। अब भौरी गढ़ पर घोड़ा है तो एक 60 हाथ का गहरा घोड़ा, उसके ऊपर तखत डाल दिए और जब भूजल को भोजन परसे तो भोजन में जहर मिला दिया। चंद्रावल बहन ने संकेत कर दिया कि भैया भोजन में जहर मिला है, तो अगर तुम खाओगी तो भोजन शांत हो जाओगे। भौरी गढ़ में भोजन परोसे गए, लेकिन उदल ने अपना दिमाग लगाया और बड़ी अच्छी बात करी, बुंदेली की संस्कृति देखो आप, बुंदेली निभा दी। जब थाल लगे बड़ो भाने साथ में बैठो, और उदल ने भोजन की थारी बदल ली, कहा जो बहन की ससुराल जाता है मेहमान बनके, हमारे महोबा की रीति है कि जो संगे भोजन खा बैठे उनको थार बदल ले। अब उदल के थार में जहर मिलो तो जोरावर के थार में जहर नहीं मिलो, तो जैसी थार बदलो सो मुंह उतर गो जोरावर को। अरे उदल ने जब विनय उचारी जोरावर से कहा सुनाए,

खान दिया बताए, अरे क्रोध में आया जोरा।

0: सुनो हमारी बात, तीन बार पे हम ना बोले।
1: तीन बार कह लो तुम, तीन बार तक महोबा का कोई बुंदेलखंड का बोलता नहीं है, चौथे बार जब करोगे तब देखा जाएगा।
0: तीन बार पे हम ना बोले, चौथे पे हम छोड़ते ना आए, तो तीन बार जोरा बर करके लूटा सिर पे दिया लगाए। तीन बार जोरा बर करके लूटा सिर पे दिया लगाए।
1: कर्जा उगल है थोड़ी गर भानज सुन लो का लगाए, अब बारी

लड़ाई भूंग परी है, आप तलवार रही है उठाए। अरे खट खट खट खट तेगा बाजे, नंगी चमक रही तलवार।

लड़ते लड़ते भोईगर में बेभोरे पर पहुंचे जाए। भाई लड़ाई तो योद्धा की तखत टूट के नीचे जाए। उदल गिर गए भोरी।

गरजा मलखे गरजा मलखे है बोतल में और महवे में कहा सुनाए। अब तुम चलो भौरी गढ़ को उदल भौरे में गर जाए। अब तुम चलो भौरी गढ़ को उदल भौरे में गिर जाए। रातों रात पहुंच भौरी गढ़ भौरे से दई सुरंग बनाए। आला उदल रात

हरि सिंह से कहा सुनाए, अब तुम युद्ध करो हमसे फिर या फिर प्रेम को दे पहुंचाए, तो तुम तरफ से लड़

सात भाने जी एक दिन मारे पर बहना की लई विदा कराए टोली में बहना दे थारी और महवे को पूछ कराए बेली में बहना

0: बुंदेली के व्यंजनों और बुंदेली की सुगंध से जोड़ते हुए अगली प्रस्तुति के साथ आप हैं राम कुमार प्रजापति व सविता राज।
1: अरी एरी बुंदेली।

ब्याह काज में कच्ची पक्की संगत होत है। और जब बड़ा पे शक्कर वही में घी डालो जाए उम्मीद के पाए चावल में बड़ो आनंद आऊ। सो कही है के तित पावन पे बने ठरूला, तित पावन बुड़की दिवारी ग्यास ई त्योहारन पे ठरूला बनत है। सो तित पावन पे बने ठरूला सो सबको मन

वाणी परिवार की तरफ से जो यही टाइम पे शिल्पहार भी भेजो जा रहा है, एक जो शिल्पहार कबे तो जात पुड़की पर पुड़की को जब

मारी जावे बुड़की के दिन बुड़की देन जटा शंकर की बुड़की लेन जटा शंकर की जीजा सारी जावे हरी एरी अरे तुम बोली तो स्वाद ले जब तरा तुझ

जटा जटा शंकर जाओ, दर्शन भी करो, भुड़की भी लो कुंड में। तरतली के लड़ुआ तीन दिना के, अरितली के लड़ुआ तीन दिना के, वे पांच दिना लो खावे।

0: इस अवसर पर आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों की यात्रा पर कार्यक्रमों के संबंध में अपना उद्बोधन देते हुए आप हैं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ समाजसेवी और चरण पादुका स्थल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन से सचिव श्री शंकरलाल सोनी।
1: 50 वर्ष आकाशवाणी, 90 वर्ष आकाशवाणी भारत की, इस आयोजन में बुंदेली लोकगीतों का रंगारंग कार्यक्रम जो हो रहा है, आदरणीय पुष्पेंद्र अपने राजप साहब बीके पुष्पत जी, आदरणीय प्रजापति जी, राजन जी, हमारे अवस्थी जी और आप सभी कवित्री आदरणीय खरे जी, आभा जी और सभी पूरा परिवार, संजय जी, दिलाराम जी, ये जो आयोजन हो रहा है ये हमारा गौरव है।

0: छतरपुर में आकाशवाणी का यहाँ पर जब नाम आया तो ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई भविष्य। और जब ये यहाँ स्थापित हो गई तो इसके जो भी प्रोग्राम आते थे उस प्रोग्रामों में हम सन 72 से जुड़े रहे, 73 से जुड़े रहे। इसका जब वो हुआ कार्यक्रम उससे शुरू से जुड़े रहे। कॉलेज से आते थे यही कार्यक्रम में हम लोग। उस जमाने में हमारे ये सुरन तिवारी थे, ब्रजेंद्र सक्सेना थे और ये जगदीश शुक्ला, हम कई लोग मतलब हमारे पुराने साथी लोग थे। तो ये बुंदेलखंड का जो एक धरोहर है, लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक कलाकार है, आज जो पहचान पूरी दुनिया में मिली है ये आकाशवाणी की देन। आकाशवाणी ना होता तो यहाँ के बुंदेलखंड की इतनी पहचान नहीं मिल पाती। ये बुंदेलखंड कहाँ तक जाता है आप देखो कि हमारे डीआईजी साहब आए थे तो वो कह रहे थे जब हम खंडवा में थे वहां भी इसको सुना करते थे, रायपुर में सुनाया जाता था। ये इसकी मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत लंबी थी और बहुत बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे हर क्षेत्र में। तो ये हमारे यहाँ का गौरव है और इस गौरव को आप लोग कलाकारों ने, आपके स्टेशन के जो परिवार है सभी ने इसको गौरवान्वित किया है। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और इसी तरीका से आप इस आकाशवाणी को गौरवान्वित करते रहे, बुंदेलखंड की ये लोक कला को पहचान देते रहे। जय भारत, जय हिंद।
1: आकाशवाणी छतरपुर में आयोजित बुंदेली और सुगम संगीत के इस म्यूजिक कंसर्ट पर आधारित और आकाशवाणी की यात्रा के संदर्भ में, कार्यक्रमों के संदर्भ में और आकाशवाणी से जुड़ी यादों को साझा करती हुई आप हैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सेवानिवृत्त प्राचार्य आभा श्रीवास्तव मैडम।
2: यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि जन, आदरणीय कलाकार सोनी जी, पुष्पत जी, राजेंद्र जी और भी यहाँ बहुत हमारे रविंद्र जी और भी उपस्थित हैं, सभी उपस्थित जन आप सभी का स्वागत करती है यह आकाशवाणी। 90 वर्ष पूरे हुए और छतरपुर को 50 वर्ष पूरे हुए। अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा आदरणीय प्रजापति जी ने बहुत ही अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए, लोकगीत ईश्वरी आल्हा उदल हम लोग पढ़ते आए हैं और बुंदेली में हमारा विषय भी था एक एमएमए तो एक उसमें भी पढ़ा इनको और बहुत ही अच्छा अभी आपने ये गायन किया। भैया लाल व्यास जी की एक इस तरह से पुस्तक आई थी इसी में आपने चंद्रावल का उनका उल्लेख किया इसमें तो उसमें मैंने समीक्षा की थी। उस समय बड़ा कठिन हुआ करता था क्योंकि उस समय हम लोग एक प्रकार से बुंदेली से रूबरू हो रहे थे, परिचित हो रहे थे और आदरणीय प्रिय गीता राज जी का नाम मैंने सुना हुआ है पहले से। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर और बहुत जिस तरह से स्त्रियां, कुछ स्त्रियां बड़े रुच रुच के बताती हैं आज मैंने यह बनाया ऐसा बनाया कि सुनने वाले के मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही आज गीता राज जी ने ऐसे बुंदेली व्यंजनों की इतनी सुंदर व्याख्या करी अपने उसमें गीतों में, लोकगीतों में कि लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। और जो पुरानी जो परंपराएं रही हैं और जो हमारे व्यंजन रहे हैं वो भी धीरे धीरे हम लोगों को सब याद आते गए। आपकी जंगल जलेबी, सत्तू, पना, सब बथुआ, बहुत सारी चीजें आपने अभी अपने उसमें कही। तो जो युवाणी से मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, जब मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ती थी तब से और फिर व्यस्तता होने के कारण फिर कभी गायब हो जाती थी, कुछ दिन के लिए कहीं व्यस्त हो जाती थी फिर आ जाती थी, लेकिन हमारा आकाशवाणी नहीं छूटा। तो यह जो आकाशवाणी है केवल एक नेटवर्क नहीं है, यह पूरे भारत की आवाज है। और एक समय था जब ये स्वर्णकाल था रेडियो का, लेकिन अब टीवी आ गया है और पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसका वर्चस्व नहीं है, बल्कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इसमें जानकारियां प्राप्त करते हैं, समाचार भी हम सुनते हैं देश विदेश की, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी तरह से हमें इसमें समाचार मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो प्रातः वंदना से लेकर इसका प्रारंभ होता है, बच्चों के लिए इसमें कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, नारी सशक्तिकरण, नारी जगत है और भी बहुत से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो एक यह भारत की आवाज है और इसको आवाज मिलती रहनी चाहिए, यही सभी से अपेक्षा है।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी @90 आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल के विशेष इस अवसर पर और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल पूरे हो रहे हैं इस अवसर पर श्रोताओं तक अपना संदेश पहुंचाते हुए आप हैं आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम प्रमुख श्री रविंद्र कुमार प्रजापति।
3: आज हम देखिए 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष के गौरवपूर्ण दिवस का ये जो सफर है, ऐतिहासिक सफर है, हम पूरा कर रहे हैं। 9 दशकों की इस प्रेरणादायी यात्रा में आकाशवाणी ने देखे सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से जन जन में आत्मीय संबंध स्थापित किए हैं और आपकी निरंतर सहभागिता, विश्वास और स्नेह ने ही आकाशवाणी को समाज की सशक्त आवाज बनाई है।

0: आकाशवाणी ने देखिए सूचना हो, शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से देखिए समाज को दिशा देने का कार्य किया है और आकाशवाणी छतरपुर ने बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, लोक भाषा, कला और जनजीवन को देश भर के श्रोताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं और आगामी 7 अगस्त को आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे करेंगे। देखिए ये केवल एक वर्षगांठ नहीं है बल्कि उन अनगिनत यादों, आवाजों, संस्कृतियों, जन सरोकारों का उत्सव है जिन्हें आकाशवाणी ने दशकों से संजोकर रखा है। जो रेडियो सुनते हैं उनके जहन में आज भी रेडियो बसता है, रेडियो की आवाजें बसती हैं और जो रेडियो का जो मधुर संगीत है वो सिर्फ रेडियो से सुनना चाहते हैं। रेडियो प्रेमियों से हम बात करें तो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के इतने अन्य साधन होने के बाद भी आज भी रेडियो की आवाज सुनना पसंद करते हैं। यही तो देखिए रेडियो की पहचान है कि बदलते परिवेश में भी रेडियो को नहीं बदल सके और उसकी जो लोकप्रियता है वो कहीं कम नहीं हुई। आवाजों का यह कारवां 9 दशक से चल रहा है, आवाजों का यह कारवां 9 दशक से चल रहा है, जन जन के मन में आकाशवाणी विश्वास का दीप जल रहा है। यादों के झरोखों से आज फिर कुछ पल संजोएंगे, एक यादगार संग हम आकाशवाणी का छतरपुर का ये उत्सव मनाएंगे। आज हमारा आकाशवाणी छतरपुर इस सफर में लगातार साथ दे रहा है और इस सफर में सबसे बड़ा जो साथ है हमारे श्रोताओं का है, उनके सुझाव, समीक्षाएं हमें समय पर मिलते हैं और उनको हम अमल करते हैं और यही जो गठबंधन है हम लोगों का यूं ही चलता रहेगा। हम सभी वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम लाते रहेंगे, युवा, बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, ग्रामीण, किसान, सभी के लिए देखिए नए नए कार्यक्रम है और यहाँ की जो आकाशवाणी छतरपुर की पहचान है वो है बुंदेली लोक संगीत। तो बुंदेली लोक संगीत का आप आनंद लेते ही है, ऐसे ही आप कार्यक्रमों को सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में।
1: इस अवसर पर आकाशवाणी के सभागार में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, कलाकारों और श्रोताओं का आभार ज्ञापित करते हुए साथ ही श्रोताओं को आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पूरे होने पर बधाई संदेश देते हुए आप हैं आकाशवाणी छतरपुर के सहायक निदेशक अभियांत्रिकी और नोडल अधिकारी श्री विनोद कुमार पुष्पद।
2: दिनांक 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज का यह कार्यक्रम बुंदेली लोक गीतों का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में अभी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। इस अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दी और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में हम आप सभी श्रोताओं और कलाकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभारी हैं कि आप सबने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से सफल बनाया। आकाशवाणी विगत 90 वर्षों से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत देश के विभिन्न वर्ग के श्रोताओं को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों को बना करके अपने दर्शकों को प्रस्तुत करना रहा है और इसमें वो लगातार प्रयास करता रहा है। साथ ही आकाशवाणी छतरपुर भी अपने केंद्र के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुत करता रहा है। आकाश में जा रहा है वह समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए रोजगार से संबंधित सूचनाएं और ज्ञान से संबंधित सूचनाएं, शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम UGC NCERT के भी प्रस्तुत किए गए जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने भी बहुत लाभ प्राप्त किया। मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी छतरपुर के बहुत कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए। मनभावन कार्यक्रम और लोकगीतों के कार्यक्रम बहुत ही उत्तम क्वालिटी के रहे। आनंद देश के दूर दूर के लोगों ने उठाया और पत्रों के द्वारा इसकी प्रशंसा भी की। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल होने के अवसर पर हम आप सबको बधाई भी देते हैं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ विगत 7 जून 2026 को आकाशवाणी छतरपुर के सभागार में आकाशवाणी @

90 और आकाशवाणी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित संगीतमय म्यूजिक कंसर्ट पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न हुई। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर में आयोजित म्यूजिक कंसर्ट 2026 की रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने

पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा संपन्न होती है। कल अपनी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।